मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 जून 2026। इस समय सुबह के

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा

0: के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता, माफ़ कीजिएगा, अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये भक्ति रचना। और आइए कार्यक्रम आराधना में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नितिन मुकेश के स्वर में ये भक्ति गीत।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

0: इस भक्ति गीत के साथ आज कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आलेख का विषय है आत्मविकास और संकलन एवं वाचन स्वर है शक्ति का।
1: आत्मविकास शब्द दो शब्दों आत्मा और विकास के मेल से बना है। आत्मा व्यक्ति की चेतना उसका मूल स्वरूप है और विकास का अर्थ है वृद्धि प्रगति या पूर्णता की ओर अग्रसर होना। इस प्रकार आत्मविकास का अर्थ है व्यक्ति का अपने भीतर निहित संभावनाओं को पहचान कर उन्हें पूर्णता तक ले जाना। यह केवल बाह्य उपलब्धियों तक सीमित नहीं है बल्कि यह आंतरिक शांति आत्म जागरूकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने की प्रक्रिया है। भारतीय दर्शन में आत्मविकास को जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। साहित्य में चाहे वह प्राचीन ग्रंथ हो या कबीर तुलसी और आधुनिक लेखकों की रचनाएं, आत्मविकास की यात्रा को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में आत्मविकास को स्वयं की पूर्णता के रूप में परिभाषित किया गया है। अद्वैत वेदांत में आत्मविकास को आत्मबोध की प्राप्ति के रूप में देखा गया है। आदिशंकराचार्य ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में आत्मविकास को नित्य अनित्य विवेक के माध्यम से अज्ञानता के आवरण को हटाने की प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार आत्मा शुद्ध चेतना है जो देह मन और बुद्धि से परे है। आत्मविकास का लक्ष्य है इस शुद्ध चेतना को पहचानना और माया के बंधनों से मुक्त होना। भागवत गीता आत्मविकास का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की नित्यता और देह की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं। गीता में आत्मविकास के लिए 3 प्रमुख मार्गों कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन है। कर्मयोग व्यक्ति को निष्काम कर्म के माध्यम से आत्मविकास की ओर ले जाता है। ज्ञान योग विवेक और आत्म जागरूकता के द्वारा और भक्ति प्रेम और समर्पण के माध्यम से। भारतीय साहित्य आत्मविकास की खोज का एक समृद्ध स्रोत रहा है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में आत्मविकास को भक्ति और प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कबीर के दोहे आत्मविकास की सरल और गहन अभिव्यक्ति हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। यहाँ कबीर आत्मविकास को मन की शुद्धता और ईश्वर के साथ एकता के रूप में देखते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य में आत्मविकास को व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं और गीतांजलि आत्मविकास को मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य के रूप में देखती हैं। आत्मविकास का प्रथम चरण है आत्म जागरूकता। यह व्यक्ति को अपने विचारों भावनाओं और व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आत्म जागरूकता व्यक्ति को अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। आत्मविकास के लिए स्पष्ट और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। ये लक्ष्य व्यक्ति के मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। आत्मविकास के लिए साधना और अनुशासन अपरिहार्य है। ध्यान योग और आत्मनिरीक्षण जैसे अभ्यास व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाते हैं। अनुशासन व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविकास में शिक्षा और कौशल विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यक्ति को नई जानकारी प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को निखारने

0: का अवसर प्रदान करता है। आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। दूसरों की सहायता करने से व्यक्ति अपने अहंकार को कम करता है और आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी ने सेवा को आत्मविकास का आधार माना और इसे अपने जीवन में अपनाया। आत्मविकास केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, इसका सामाजिक आयाम भी है। एक आत्मविकसित व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और दूसरों को प्रेरित करता है। आत्मविकास व्यक्ति को यह समझ देता है कि सभी मनुष्य एक ही चेतना के अंश हैं। यह समझ सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और समरसता को बढ़ावा देने में सहायक होती है। आत्मविकास मानव जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है जो व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय दर्शन और साहित्य में आत्मविकास को जीवन का परम उद्देश्य माना गया है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान ने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। आत्मविकास की यह यात्रा आत्म जागरूकता से प्रारंभ होती है और साधना, अनुशासन और सेवा के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ती है। आज के युग में जब व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकवादी जीवन शैली से जूझ रहा है, आत्मविकास की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह व्यक्ति को आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। आत्मविकास का यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाने का एकमात्र रास्ता है।
1: आत्मविकास विषय पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। संकलन एवं वाचन स्वर था शक्ति का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरितमानस का गायन, भाग 95। मुख्य गायन स्वर है भूपेंद्र सिंह का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन भाग 95। मुख्य गायन स्वर था भूपेंद्र सिंह का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। जानकारी का विषय है धान में खरपतवार नियंत्रण।
1: देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में की जाती है। प्रायः सभी राज्यों में यह फसल उगाई जाती है, किंतु जहां अधिक वर्षा और सिंचाई का प्रबंधन है वहां पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वर्तमान में धान का उत्पादन लगभग 10 करोड़ टन पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अधिक पैदावार देने वाली खाद एवं सिंचाई का अधिक उपयोग करने में सक्षम धान की उन्नत किस्मों के प्रचलन से लगभग पिछले 2 दशकों में धान की पैदावार में व्यापक वृद्धि हुई है। फिर भी इसकी औसत पैदावार काफ़ी कम है। हमारे देश में धान की खेती मुख्यतः 3 परिस्थितियों में की जाती है: वर्षा आश्रित उपजाऊ भूमि पर, वर्षा आश्रित निचली भूमि और सिंचित धान की भूमि पर। ऊंची भूमि में जहां इसकी खेती वर्षा पर आधारित है वहां खरपतवार नियंत्रण एक गंभीर समस्या है। यदि इनका समय पर नियंत्रण नहीं हुआ तो फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में धान की बुआई या रोपाई के पहले खेत की मचाई कर देने से खरपतवारों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। धान की फसल के प्रमुख खरपतवारों की बात करें तो विभिन्न प्रकार से की गई धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। वर्षा आश्रित उपजाऊ भूमि में प्राय एक वर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवारों की भरमार होती है, जबकि निचली भूमियों में एक वर्षीय घासें, मोथा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाते हैं। धान की फसल में पाए जाने वाले खरपतवारों को हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। स्कूल के खरपतवारों की चौड़ी पत्तियां और मुख्यतः 2 बीजपत्री होती हैं। स्कूल के खरपतवारों का प्रकोप मुख्यतः वर्षा आश्रित सीधी बोने वाले धान में अधिक होता है और इसके अतिरिक्त वर्षा आश्रित निचली भूमि में

0: इस प्रजाति के चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार ज़्यादा होते हैं। घास कुल के खरपतवार, इस कुल के खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे कि पालक, कोदो, दूब घास आदि। मोथा कुल के खरपतवारों की भी संख्या ज़्यादा होती है। इस कुल के खरपतवार की पत्तियां लंबी, तना तीन किनारों वाला तथा ठोस होता है। जड़ों में गोल गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें भोजन इकट्ठा करने और नए पौधों को जन्म देने में सहायक होती हैं। खरपतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसल में खरपतवारों से होने वाले नुकसान को 15 से 85% तक आंका गया है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है, परंतु यह नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि धान को किस प्रकार से उगाया गया है। प्रायः सीधे बोए गए धान में रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक नुकसान होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणुओं एवं कीट व्याधियों को भी आश्रय देते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज धान बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता भी खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धानों में 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 5 से 15 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 से 13 किलोग्राम फास्फोरस तथा 7 से 14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अवशोषित कर लेते हैं तथा धान की फसल को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं। धान की फसल में खरपतवारों से नुकसान खरपतवारों की संख्या, किस्म, फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। खास कुल के खरपतवार जैसे सांवा, कोदो आदि फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बाद की अवस्था में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। धान की फसल का मुख्य खरपतवार सांवा की संख्या ज़्यादा होने पर फसल को प्रभावी नुकसान होता है। फसल के पौधे अपनी प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, अतः फसल को इस अवस्था में खरपतवार रहित रखना बड़ा जरूरी होता है। सीधे बोए गए धान में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद तथा रोपाई वाले धान में 30 से 45 दिन बाद खरपतवार की प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। अतः क्रांतिक अवस्था में ही फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से बहुत जरूरी है तथा फसल का उत्पादन अधिक प्रभावित न हो इस पर नियंत्रण रखना बड़ा जरूरी है। खरपतवारों की रोकथाम ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवारों को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से करें। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के लिए किसान भाई कई तरह की विधियां अपनाते हैं, जैसे यांत्रिक विधि या फिर गहरी जुताई द्वारा या फिर अन्य विधियों द्वारा। किसान भाई खरपतवारों का नियंत्रण करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। जानकारी का विषय था धान में खरपतवार नियंत्रण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही समय पश्चात आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल सुबह 7 बजे। 7:15 पर आप आनंद ले सकेंगे सुगम संगीत का। श्रोताओं, 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे नमस्कार सरगुजा। 8:30 पर रायपुर केंद्र द्वारा अनुप्रसारित ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर का आप आनंद ले सकेंगे। 9:00 आप सुन सकेंगे परिक्रमा। 9:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुंजन का आप आनंद ले सकेंगे। आपकी बात आपके गीत फोन इन कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे 10:00। पत्रों और फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित होगा 11:00। 12:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे। 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे। 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा और ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाई आप सुन सकेंगे 1:10 पर। 1:40 पर ईमेल की गूंज का आप आनंद ले सकेंगे और 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और

0: गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण किया जाएगा। हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी, जिसमें आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर। 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम प्रसारित करेंगे शाम 6:10 पर। 6:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली का आप आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम माधुरी का आप आनंद लेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा प्रसारित किया जाएगा शाम 7:05 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 50वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागं अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरुनगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊनगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एम

0: सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां ICC 20x20 विश्वचषक क्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार अभी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए साजन कर्मा सरगुजिया लोकगीत राम अनुज राजवाड़े और साथी के स्वरों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंजे जंगल। लीजिए, अप्रस्तुत है सादरी जलसा गीत रामेश्वर लकड़ा और साथियों के स्वरों में।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए राम विशाल और साथी के स्वरों में ये किसुन खेल सरगुजिया लोकगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। अब साहिर का लिखा ये गीत प्रस्तुत है अदनान सामी की आवाज में।

0: गीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: सुप्रभात श्रोताओं, कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ प्रमुख समाचार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का ये सबसे भरोसेमंद माध्यम है। हमर हाथी हमर गोठ, सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचार इसके आगे और भी हम आपको बताएंगे, पर आइए सुनते हैं पहले ये खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम है धर्म करम, आवाजें हैं मुकेश और साथियों की, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, अब समाचार जिला मनिंदगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदाय किए गए मंगलसूत्र संबंधी वायरल वीडियो का तथ्यात्मक खंडन किया जाता है। एमसीबी 14 जून 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्रसारित एक वीडियो में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदान की गई उपहार सामग्री, विशेष रूप से मंगलसूत्र की गुणवत्ता को लेकर भ्रामक और तथ्यहीन दावे किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाओं द्वारा ये दावा किया गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 10 फरवरी 2026 को चनवारीडांड खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रदान किया गया मंगलसूत्र गिलेट का था और इसकी सामग्री के विरुद्ध 15,000 रुपये भुगतान किए जाने का भी दावा किया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है। 10 फरवरी 2026 को खड़गवां विकासखंड के चनवारीडांड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कुल 184 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। वित्तीय वर्ष में 2025-26 में प्रति कन्या 50,000 रुपये की स्वीकृत राशि के अनुसार उन्हें लाभ भी प्रदान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के बैंक खाते में 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि RTGS के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की गई थी। शेष 15,000 रुपये की राशि से सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्थाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसमें भवन किराया, भोजन, नाश्ता, टेंट, बैठक व्यवस्था, परिवहन, प्रमाण पत्र और वर-वधु के लिए वस्त्र, जूते चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र और अन्य श्रृंगार सामग्रियां भी शामिल थीं। ये उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अनुसार मंगलसूत्र में चांदी का होना अनिवार्य नहीं है। इसी कारण उपलब्ध वित्तीय सीमा एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मंगलसूत्र का क्रय

करके हितग्राहियों को प्रदान किया गया था। बाद में प्रदायित मंगलसूत्रों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित फर्म के भुगतान से प्रति मंगलसूत्र 1,000 रुपये की कटौती की गई और ये राशि सीधे संबंधित वधुओं के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई थी। परिणामस्वरूप प्रत्येक पात्र कन्या को कुल 36,000 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जबकि शेष राशि विवाह आयोजन और आवश्यक सामग्री के नियमानुसार व्यय की गई थी। इसलिए ये स्पष्ट किया जाता है कि 10 फरवरी 2026 को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता नहीं की गई थी। संपूर्ण आयोजन शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों, वित्तीय प्रावधानों और भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए ही संपन्न कराया गया। जनसामान्य से अपील है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक और अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और किसी भी सूचना की सत्यता संबंधित विभाग या जिला प्रशासन से प्राप्त करें। तो श्रोताओं, समाचारों के क्रम को थोड़ा सा रोकते हैं और सुनते हैं अब ये खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम है 20 साल बाद, आवाज़ है हेमंत कुमार की, गीत लिखा है शकील बदायूनी ने।

0: 100.2 FM पर।
1: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
2: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
0: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
2: अच्छा तो अभी ट्यून करता हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM, आवाज वही अंदाज नया।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। अगला समाचार इस प्रकार है। आवेदन पर त्वरित जांच, शासकीय भूमि पर आंगनबाड़ी निर्माण की पुष्टि, अतिक्रमण प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ। अंबिकापुर 13 जून 2026, जिले के बतौली तहसील अंतर्गत इच्छा मृत्यु की इजाजत संबंधी प्राप्त आवेदन पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए हल्का पटवारी से मौका जांच प्रतिवेदन और पंचनामा प्राप्त किया गया। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि ग्राम बटई केला स्थित खसरा क्रमांक 1784 शासकीय मद की भूमि है और उक्त भूमि पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण विभागीय स्वीकृति के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन में ये भी स्पष्ट हुआ है कि आवेदिका के परिवार के पास ग्राम बटई केला और ग्राम महेशपुर में पृथक खातों में भूमि दर्ज है। आवेदिका द्वारा जिस भूमि को निजी कब्जे की भूमि बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है, वो राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज पाई गई है। जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि शासकीय भूमि पर पूर्व में निर्मित आंगनबाड़ी भवन को हटाकर उसी स्थल पर नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इससे ये स्पष्ट हुआ कि निर्माण कार्य निर्धारित शासकीय स्थल पर ही जारी है। आवेदन में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के आरोप लगाए गए थे, उस संबंध में भी प्रशासन द्वारा गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया गया। उपलब्ध तथ्यों एवं शिकायतों के परीक्षण उपरांत संबंधित प्रकरण तहसील न्यायालय में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विधि सम्मत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि से संबंधित शिकायतों और अतिक्रमण प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप निराधार हैं। समाचारों को थोड़ा रोकते हैं और अब बढ़ते हैं इस अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया, आवाज किशोर कुमार की है, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खर खर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए।

अगला समाचार इस प्रकार है। जिला पंचायत सीईओ ने किया सीतापुर जनपद क्षेत्र का निरीक्षण, आंगनबाड़ी आवास एवं जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा भी की। अंबिकापुर 13 जून 2026, जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत सीतापुर अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत सोनतरई में नवातरिया अंतर्गत तालाब गहरीकरण कार्य और निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन का अवलोकन किया गया। सीईओ ने तालाब गहरीकरण कार्य को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक श्रमिक लगाए जाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत बगडोली में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा करके आवास निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने पर जोर दिया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी भवन, अर्थन गली प्लग और स्टोन गली प्लग निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। सीईओ ने सभी जल संरक्षण संरचनाओं को तकनीकी मापदंडों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में ग्राम पंचायत डेकीडोली में तालाब गहरीकरण कार्य का निरीक्षण करके कार्यरत मजदूरों से चर्चा की गई और समस्याओं की जानकारी ली गई। जिला पंचायत सीईओ ने सभी निर्माण एवं जल संरक्षण कार्यों में अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित करके गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। समाचारों को यहीं थोड़ा विराम देते हैं और अब बढ़ते हैं इस अगले गीत की ओर। स्वर है मुकेश का, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार सरगुजा। अगला समाचार इस प्रकार है। 16 जून से प्रारंभ होगा नया शैक्षणिक सत्र। 1 जुलाई से स्कूल खुलने की खबर भ्रामक और फर्जी है। अंबिकापुर 13 जून 2026 लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 जून 2026 मंगलवार से प्रारंभ होगा। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों में प्रसारित की जा रही ये सूचना कि नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा पूरी तरह असत्य, भ्रामक और फर्जी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्यार्थियों, पालकों, शिक्षकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल शासन एवं विभाग द्वारा जारी अधिकृत सूचनाओं पर ही विश्वास करें। सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट एवं भ्रामक खबरों से सावधान रहें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों में निर्धारित तिथि से शिक्षण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। और इस समाचार के साथ आज कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: श्रोताओं, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में पहले हिंदी समाचार प्रभात और फिर अंग्रेजी भाषा में मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। इसके लिए कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है।

0: भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग

0: 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर का प्रसारण।

लोक संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विदुषी ममता चंद्राकर और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

लोक संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत।

लोक संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत।

विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत।

विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना, लोक संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। इसके साथ ही लोक संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोकसुर का प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र।

0: स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधता के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में शहीदी दिवस पर याद किए गए महान जननायक और धरती आबा बिरसा मुंडा। विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों ने किया रक्तदान। जीवन के लिए जरूरी है जैव विविधता, आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रम। श्रोताओं, 9 जून को शहीदी दिवस पर महान जननायक धरती आबा और आदिवासी जनचेतना के आदि पुरुष शहीद बिरसा मुंडा को याद किया गया। छत्तीसगढ़ प्रचार एवं विकास संस्थान ने एक गोष्ठी आयोजित करके बिरसा मुंडा के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सरोकारों को रेखांकित किया। वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के आंदोलन पर अपनी बात रखते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों और स्थानीय शोषक जमींदारों के खिलाफ वैचारिक और सशस्त्र लड़ाइयां लड़ीं और आदिवासी चेतना और शोषितों पीड़ितों के संघर्ष को संगठित किया। श्री श्रेयांश पांडेय ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा,
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बिरसा मुंडा 19वीं सदी के एक प्रमुख जननायक थे। उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मुंडाओं के महान आंदोलन उनगुलान को अंजाम दिया। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, जिनके पास प्रमुख सुविधाएं नहीं थी, जिनका शोषण किया जाता था, और वो शोषण न कि सिर्फ अंग्रेजों द्वारा, वहाँ के जो जमींदार होते थे, जो वहाँ के किसान वर्ग के लोग हो गए या आदिवासी लोग हो गए या वहाँ के कोई भी ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती थी, उनका शोषण करते थे। बिरसा मुंडा ने उस सारी कमियों को ढूंढा जो समय की समाज में चलती थी और एक कुशल नेतृत्व में अपने उनगुलान मूवमेंट को जन्म दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे नेतृत्व की जरूरत तो हमेशा रहेगी। उस समय की व्यवस्था बहुत खराब थी, जमींदारी सिस्टम चलते थे, अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था। तो समाज के पहलू में यदि देखा जाए तो बिरसा मुंडा ने विशेष रूप से एक महान जननायक की भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरीके से समाज में उनका शोषण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक मोर्चे में तो ये बिल्कुल कहना ठीक होगा कि बिरसा मुंडा ने लोगों को जागरूक किया और अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज तो थे ही, उनके साथ साथ साठ गांठ बनाकर वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के जमींदार होते थे या वहाँ के जो रसूखदार होते थे, उन लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के साथ एक साठ गांठ बना करके वहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिरसा मुंडा ने लोगों को इस बारे में प्रेरित किया कि वो अपने इस बात को पहचाने कि असलियत में वो कौन है जो उनका शोषण करते हैं, उनका दमन करते हैं, जिसमें अंग्रेजों के साथ साथ वहाँ के जमींदार रसूखदार भी आते हैं। आर्थिक दमन भी उस समय बहुत रहा। ये जमींदारी सिस्टम जो थी उसमें लोगों को उनके जमीन को ले लेना, बेगारी सिस्टम पे उन पे काम करवाना, उस समय ये सब प्रमुख चलन के माध्यम थे जिसमें लोगों का दमन होता था, उनका शोषण होता। तो ये बेगारी प्रथा हो गई या बहुत ऊंचे ब्याज पे लोगों को पैसा देना और फिर उनको शोषित करना और बदले में उनकी अगर थोड़ी भी पूंजी है, जमीन है, उसको हड़प लेना, तो ये सब जो है उस समय बहुत प्रचलित था। बिरसा मुंडा ने लोगों को यह भी प्रेरित किया कि इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाए।
0: हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में भी घोषित किया है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में सुरक्षित रक्तदान के प्रति जागरूकता और चेतना उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से रक्तदाताओं का आभार भी व्यक्त किया जाता है। अक्सर लोगों के मन में रक्तदान को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रक्तदान अत्यंत सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है। चिकित्सा महा

0: विद्यालय के छात्र श्री हर्षित पांडे ने रक्तदान के बाद हमसे बातचीत की।
1: जी, हमारे समस्त युवाओं को जरूर से जरूर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि युवा जो होते हैं उनके शरीर में जो रक्त बनने का प्रोसीजर होता है वो आराम से और जल्दी जल्दी होता है। उनका खान पान भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से रक्त जल्दी बन जाता है। और रक्तदान करने से काफ़ी ज़्यादा जो रक्तदान करता है उसको भी काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं बनती हैं, जो ब्लड सेल्स बनती हैं, उसको दान करने के बाद जो बना जहाँ लीवर में जहाँ बोन मैरो में बनती हैं उसको बार बार बनाने का प्रैक्टिस होता है, तो उसके बाद खून साफ होता है, डिजीज होने का सिंड्रोम होने का खतरा और कम हो जाता है, और वो बार बार बनती रहती हैं तो उससे प्रैक्टिस रहता है उसको भी बनाने का। प्लस रक्तदान ना करने से या रक्त ना मिलने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गया जिसमें खून का कमी हो गया, किसी के माता पिता। अब ऐसा तो हम लोग दूसरों का सोचते हैं, आप इसको अपने ऊपर लेके सोचिए कि जैसे किसी को अपने घर में खून की कमी हो गई हो और कोई कहीं ऐसा कोई एज लिमिट वाला बंदा ना हो जो खून दे सके, अब ब्लड ग्रुप मैच ना कर सके, तब बहुत कितनी परेशानियों से और कहाँ कहाँ से मतलब कितनी परेशानी होती है कि उसको रक्त नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। तो रक्त दान करके किसी का जान बचा लेने से अच्छा धर्म और क्या हो सकता है।
0: जी, जी।
1: तो हमारी समझ से 45 साल से कम के लोगों को तो रक्तदान अवश्य करना चाहिए।
0: रक्तदान कौन नहीं कर सकता?
1: रक्तदान जैसे 18 साल से कम के बच्चे को जनरली नहीं करना चाहिए, बच्चों को, और जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं जिनको थकान जैसा लगता है और जिनको कोई बीमारी है, जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, और जिनको पता है कि हमको कोई बीमारी ऐसी जो रक्त के द्वारा फैलती है, उन लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए।
0: रक्तदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं लोगों में, जैसा कि अभी आपने बताया कि कौन कौन रक्तदान कर सकता है और कौन नहीं, तो ज़रा इन भ्रांतियों पर बातचीत कर लें। लोगों को लगता है कि रक्तदान कर दूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, पता नहीं कितने दिनों में फिर वह रक्त बनकर मेरे शरीर में आएगा, या रक्त देते समय बड़ी तकलीफ़ होगी मुझे, तो ये सब भ्रांतियाँ क्या हैं, ज़रा इस पर बताएं।
1: जी, एक सीमित समय पे जो आपका शरीर में जो रक्त बन रहा होता है वो सीमित समय पे एक समय बाद सेल सारी डेड हो जाती हैं और दोबारा बॉडी खून नए तरीके से बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि रक्त दान कर देंगे तो खून की कमी हो जाएगी शरीर में, वो बॉडी अगर आपकी सक्षम होगी तो आपका खून एक से दो मतलब कि दो हफ्तों में आराम से वो बना लेगी। दो हफ्ते तीन हफ्तों में हमेशा हमारे बॉडी में खून नया होता रहता है। खून की कमी किनको होती है? जिनके बोन मैरो में, जिनके लीवर में खून नहीं प्रॉपर बन पाता, खाने पीने में कमी होती है, जो खा पी ठीक से नहीं पाते, उनको खून की कमी हो जाती है, तो उनके शरीर में वो नहीं बना पाते, इसलिए खून की कमी हो जाती है, ना कि किसी का ब्लड अगर ज़्यादा निकल गया हो तब खून की कमी होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक दो यूनिट खून दे दिया तो एक से दो हफ्ते में वो बंदा नॉर्मल हो जाता है, बल्कि और अच्छे से जो नया खून उनके शरीर में बना हुआ है और अच्छे से अपनी क्षमताओं को कर सकता है और अच्छा उनके अंदर ऊर्जा आ सकती है। ये एकदम मिथ है कि आपके शरीर में अगर आपने रक्तदान कर दिया है तो आपका शरीर एकदम खराब हो जाएगा या फिर जो है रक्त कम हो जाएगा, ये बात एकदम मिथ है।
0: तकलीफ होती है क्या?
1: तकलीफ देखिए, रक्तदान कर रहे हैं जब तो एक इंजेक्शन से बहुत लोग डरते हैं, तो बहुत बड़ी भ्रांति के इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो ये एक लोगों के मन में डर बना हुआ है कि इंजेक्शन, जबकि अब तो इतना पतला इंजेक्शन आ गया है कि ज़रा सा भी दर्द नहीं करता। और प्लस थोड़ा सा एक यूनिट दो यूनिट खून देने के बाद तुरंत मैंने बताया ना, एक दो हफ्ते में आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब उठता है खून देने के बाद तो थोड़ा सा माने हल्का सा मतलब लगता है चक्कर टाइप का आ रहा है, हल्का सा कमजोरी लगती है, वो नॉर्मल सी बात है, मतलब आपका शरीर में खून थोड़ा कम हुआ है तो लगेगा ऑक्सीजन अचानक से कम हो गया आपके शरीर से, लेकिन जब आप थोड़ा एक हफ्ता वेट करेंगे तो आपको लगेगा कि शरीर में नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नए सिरे से आपकी बॉडी काम कर रही है। तो इस तरीके से तकलीफ जैसा तो कुछ नहीं होता अगर आपकी बॉडी सक्षम है।
0: आपने जितनी जानकारियां आप दी और जैसा कि आपने बताया कि आपने स्वयं भी रक्तदान किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक लगभग 26 बार रक्तदान कर चुके युवा श्री मयंक मनवानी से हमने बातचीत की।
2: रक्तदान एक बहुत ही अच्छा कार्य है, हर किसी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है, बल्कि रक्तदान करने से आप किसी को जिंदगी दे सकते हैं। हमें हमेशा ही जब कभी भी मौका मिले तो हमें रक्तदान करना चाहिए।
0: ऐसा कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: रक्तदान महादान है इसलिए क्योंकि किसी भी प्रयोगशाला में खून का निर्माण नहीं हो पाया, इसे हम किसी को दे सकते हैं अपने शरीर से निकाल करके और उनके शरीर में हम जिंदा रह सकते हैं।
0: मतलब दान के माध्यम से ही इसे हासिल किया जा सकता है।
2: दान करके ही आप इसे

0: हासिल कर सकते हैं ये दान लेकर के।
1: पहली बार आपको कब ख्याल आया मयंक कि मुझे रक्तदान करना चाहिए?
0: जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे मन में ये भाव आया कि क्यों ना एक अच्छी पहल की जाए, और मैंने सोचा कि रक्तदान करके ही मैं अपने जन्मदिन की शुरुआत करूं 9 सितंबर को, और उसी दिन मैंने पहली बार रक्तदान किया था। और जब इसकी जानकारी मिली कि खून जो है हम दान करते हैं तो वो बहुत बड़ा दान होता है, तो मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर तरीका है अपने जन्मदिन को मनाने का।
1: पहली बार जब आपने रक्तदान किया तो कैसा अनुभव था आपका?
0: बहुत ही अच्छा अनुभव रहा वो मेरे लिए, और जैसे लोग कहते हैं कि उससे कमज़ोरी आती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मुझे अच्छा ही लग रहा था। और रक्तदान करने के बाद भी मैं अपने आप को स्वस्थ ही महसूस कर रहा था, बल्कि एक अलग ऊर्जा मेरे शरीर में उत्पन्न हुई और मुझे बहुत खुशी हुई।
1: अब तक आप लगभग कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं, और इतना रक्तदान करने के बाद भी आज आपकी जो उम्र है लगभग 32 साल,
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: कैसा महसूस करते हैं?
0: लगभग 27 बार मैंने रक्तदान किया है, और पहली बार जब मैंने रक्तदान किया था उस समय तो मुझे पता भी नहीं, एहसास भी नहीं कि वो मेरा जो दिया हुआ जो रक्त था वो किसको चढ़ाया गया या किसके वो काम आया। तो बाद में मैंने निर्णय लिया था कि जब कभी भी किसी को ज़रूरत होगी, मुझे कुछ कॉल आती हैं या बहुत सारे लोग संपर्क में हैं मेरे जिनको रक्त की आवश्यकता होती है।
1: अभी आपने बातचीत में मुझसे बताया था कि सिकल सेल के कई मरीज हैं जो आपके व्यक्तिगत संपर्क में रहते हैं।
0: जी, सिकल सेल्स आप जानते ही हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें बाहर का ही रक्त उनको चढ़ाया जाता है, उनके शरीर में रक्त पुनः नहीं बन पाता है। तो ऐसे भी कई मेरे जानकार हैं जिन्हें हर महीने रक्त की आवश्यकता होती है, और जैसा कि नियम अनुसार हम 4 महीने से पहले रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं उस 4 महीने का इंतज़ार करता हूं, और उसके बाद जब कभी भी उनको ज़रूरत होती है वो फ़ोन करते हैं या किसी भी संपर्क माध्यम से वो मुझसे मिलते हैं या बात होती है, तो मैं रक्तदान के लिए तैयार हो जाता हूँ।
1: आप हमारे श्रोताओं को जो रक्तदान करना चाहते हैं, अब तक नहीं किए हैं, जिनके मन में एक संशय की स्थिति होती है कि कैसे रक्तदान करें, इन सब भ्रांतियों को थोड़ा कैसे दूर करेंगे आप मुझे बताएं।
0: किसी
1: जी
0: भी तरह की शारीरिक या मानसिक तरह की समस्याएं मुझे नहीं है, और ब्लड डोनेट करने से मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई समस्याएं जीवन में आती हैं। जिनके भी मन में ये प्रश्न आता है कि अगर रक्तदान करने से हमारे शरीर से रक्त कम हो जा रहा है, या फिर रक्तदान करने से हमें कोई कमजोरी होती है या कोई
1: पता
0: बीमारी
1: नहीं
0: हो,
1: रक्त बनेगा कि नहीं
0: हाँ,
1: बनेगा। जी
0: या ऐसी कोई बीमारी हमें हो जाएगी, तो ये सोच उनकी पूरी तरह से गलत है। 90 दिनों में हमारे शरीर में रक्त वापस से तैयार हो जाता है।
1: मयंक जी, आपने हमसे बातचीत की, हमारे श्रोताओं का उत्साह बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के लिए जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि इस धरती के सभी जीवों की निर्भरता एक दूसरे पर है। इस श्रृंखला के गड़बड़ाते ही संपूर्ण जैव मंडल का जीवन चक्र प्रभावित हो जाएगा। यही कारण है कि हमें हर हाल में जैव विविधता की रक्षा करनी होगी। कर्मा सहभागी संगठन ने जैव विविधता की सुरक्षा के प्रति लोगों के भीतर जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विशेषज्ञों ने लोगों की समझ बनाकर उन्हें आगे का दायित्व सौंपा। यह कार्यक्रम एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें कुछ विशेष लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करके उन्हें सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षक कहते हैं,
2: हमारे पूरे अर्थ का जो इकोसिस्टम है, हम अर्थ को एक यूनिट लेकर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हालांकि इकोसिस्टम का जो पैरामीटर है वो बड़े माइक्रो लेवल पे भी चला जाता है, लेकिन हम पूरे अर्थ को एक इकोसिस्टम लेकर बात करें तो उसमें जो नेचुरल हैबिटेट एरिया है, उसमें नेचुरल हैबिटेट एरिया में ग्रासलैंड बुशेस से लेके और ट्री सारे लेयर्स आते हैं। तो जब नेचुरल हैबिटेट एरिया, उसका जो एरिया है वो अधिक रहेगा और जो मनुष्य की जो बसाहट है उनका जो हैबिटेट एरिया है वो कम रहेगा, तो पृथ्वी का सारा कुछ संतुलित चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो नेचुरल हैबिटेट एरिया है उस नेचुरल हैबिटेट एरिया में कमी होती जा रही है, और मनुष्य जो है उस हैबिटेट एरिया में अतिक्रमण करते करके और उसको कम कर रहा है। तो इससे ये होता है कि जो हमारा अर्थ का जो अल्बिडो है, उस अल्बिडो को भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा। उम्मीद है आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। और अब लीजिए प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन।

0: विविध कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, आप सभी जानते ही हैं कि इन दिनों हम विविध कार्यक्रम में एक नया कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका शीर्षक है स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री। आप सभी जानते ही हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और ये समय है कि हम उन साथियों को याद करें जिन्होंने आकाशवाणी की इस लंबी यात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है। अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार और आकाशवाणी अंबिकापुर से वार्ताकार के तौर पर, कहानीकार के तौर पर जुड़े रहे हैं श्री वेद प्रकाश अग्रवाल जी। आज वे हमारे साथ हैं। आइए हम बातचीत करते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर की 50 सालों की यह यात्रा कैसी रही। बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका।
1: आकाशवाणी केंद्र खुला तो पूरे सर्वांचल में एक मतलब समझ लीजिए एक अजीब सा उत्साह स्फूर्ति आई, खासकर वो जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे इस अंचल में। दरअसल देखिए उस समय विद्याचरण शुक्ला सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, उनकी दिली इच्छा थी कि अंबिकापुर और जगदलपुर में नए आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ हो सके। उन्होंने पूरी कोशिश की और पूरे मनोयोग से काम किया। सबसे पहले अंबिकापुर खुला, उसके कुछ दिनों बाद फिर जगदलपुर में आकाशवाणी केंद्र शुरू हुआ और फिर अंबिकापुर के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब उसके लिए गुणात्मक रूप से कई गुना अच्छी है। पहले जो निदेशक आए आकाशवाणी में वो अमी खानपी साहब आए, तो अमी खानपी साहब बहुत बड़े शायर और वो साहित्यकार रहे और बहुत अच्छे व्यवहार के अच्छे आदमी थे और हम जैसे युवा जो छात्र होते थे, छात्र कह लीजिए और उस समय जो लिखना सीख रहे थे कविता वगैरह, तो उनको बहुत तो वो प्रोत्साहित करते थे।
0: कैसा माहौल था उन दिनों अंबिकापुर का? आकाशवाणी की स्थापना के बाद जन सामान्य में कैसा हर्ष और उल्लास का वातावरण था, जरा बताएं।
1: आकाशवाणी केंद्र खुला तो पूरे सर्वांचल में एक मतलब समझ लीजिए एक अजीब सा उत्साह स्फूर्ति आई, खासकर वो जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो इधर मुखातिब हुए, आकाशवाणी आने लगे। आकाशवाणी में कुछ लोग कोशिश करके अपना कार्यक्रम देने लगे और फिर आकाशवाणी के प्रारंभिक दिनों में ही आकाशवाणी में जो टीम आई थी यहाँ वो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोग थे और एक से एक विद्वान किस्म के लोग थे, वो अच्छे लोग आए और अच्छे कार्यक्रमों को दिया। सरगुजिया भाषा को सरगुजिया भाषा कह लें या बोली को कह लें, उसको एक स्वर मिला तो आकाशवाणी का ही वो देह है कि सरगुजिया को एक स्वर मिला, वरना सरगुजिया का कोई मानक रूप ढंग से नहीं स्थापित हो पाया था, आकाशवाणी के कारण हुआ।
0: जी जी।
1: और आकाशवाणी में तो एक से एक अच्छे लोग आए और मैं आकाशवाणी से चूंकि मेरा एक और लगाव था
0: जी,
1: आकाशवाणी भवन या आकाशवाणी का जो वो था सिलसिले का जो प्रसारण केंद्र था वो, और यहाँ जो आकाशवाणी की बिल्डिंग है
0: जी,
1: वो जिस समय बन रही थी तो उस समय कनीलाल ठेकेदार थे और उसके जो इंजीनियर थे वो हमारे एक मित्र थे हामिद खान
0: जी जी,
1: हमारे पड़ोसी भी थे, बहुत अच्छे मित्र थे। तो उनके साथ प्राय में जब बिल्डिंग बन रही थी आकाशवाणी भवन की तो उनके साथ हम लोग आ जाया करते थे, बैठते थे, गपियाते थे, तो शुरू से जुड़े हुए किस्म का हम लोग अनुभव होता।
0: मतलब ये कि आकाशवाणी भवन की ईंट रखी गई तब से लेकर और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं 50 सालों के अंतराल के बाद, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से।
1: जुड़े हुए, काफी जुड़े हुए हैं।
0: जी जी।
1: और चूंकि आकाशवाणी से लगाव इसलिए भी रहा कि आदिवासी अंचल है तो बस्तर और सरगुजा में आकाशवाणी मिले इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी, वो इसलिए कि जनजातीय लोग कुछ अपेक्षाकृत अधिक सीधे और सरल लोग होते हैं, उसका फायदा कुछ लोग उठाते रहे हैं।
0: जी जी।

0: और उनको स्वर मिल जाए और उसको आवाज मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती?
1: क्या हो सकती है जी। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात रही उस दिन के लिहाज से। जी जी वेद जी, आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
0: हम कुछ मित्र थे, कविताएं लिखते थे और फिर मैं आलेख भी उन दिनों लिखा करता था कॉलेज के टाइम से ही। तो आकाशवाणी में ये कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया या मतलब हमको आमंत्रित किया और लगभग लोग परिचित थे या हो भी गए थे।
1: जी जी।
0: एक शुरू से लगाव बना हुआ था और कार्यक्रम देते थे। मेरा ख्याल है कि वो शुरुआती दौर में उस जमाने में हम लोगों को 60 रुपए मिलता था।
1: 60 रुपए मिला करते थे।
0: हाँ, एक कार्यक्रम के 60 रुपए मिला करते।
1: जी जी। आज भी वो परंपरा है वेद जी, और आप तो जानते ही हैं कि आज हमारे जो मेहमान यहाँ आते हैं बातचीत के लिए या अपनी रचनाओं को लेकर के, तो उन्हें एक एक मानद राशि उन्हें दी जाती है। जी दी जाती है। जी जी जी।
0: ये संयोग हो सकता है या ये हम लोगों का सौभाग्य है। जैसे सुरेश पांडे हुआ करते थे
1: जी,
0: वो यहाँ कुछ दिन रहे और कई बड़े बड़े जो साहित्यकार रहे, डॉक्टर प्रमोद वर्मा कई बार आए, अक्षय जैन कई बार आए, तो इस तरह से कई लोग आते थे, बड़े बड़े जो साहित्यकार है, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो गाने का गाय उनका साथ हो जाता था, उनसे चर्चा हो जाती थी और उनके कार्यक्रम होते थे तो हम लोग सुनने उनके नजदीक जाते थे, तो अच्छा लगता था थोड़ा सा।
1: वेद जी, जब आकाशवाणी यहाँ पर खुली तो लोगों के पास रेडियो नहीं रहे होंगे, फिर लोग गोल बना करके बीच में रेडियो रख के सुनते होंगे, घर घर में रेडियो फिर बढ़ने लगा होगा, लोग सुनने लगे होंगे, तो कैसा एक दृश्य बनता था उन दिनों, जरा हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: नहीं, उस समय क्या है, 72-73 के आसपास ट्रांजिस्टर मार्केट में आ गए थे
1: जी,
0: तो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे या थोड़ा समझदार लोग थे वो रेडियो उनके लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई थी
1: जी,
0: ट्रांजिस्टर खरीदने लगे थे और बहुत लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट मैच वगैरह में होता था, सब होता था, तो एक जमाना ऐसा भी था कि लोग चिपके रहते थे ट्रांजिस्टर से।
1: हाँ।
0: खासकर जो ऑफिसों में काम करते थे, महीने भर मैच चलता था तो सुनते रहते बैठे बैठे। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक स्वर मिला सरगुजा को, सरगुजा में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई, मतलब यहाँ के जो लोग हैं और खासकर जो जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको भी उनके कार्यक्रम हुए, उनकी संस्कृति को भी बढ़ावा मिला, उनके संस्कृति के कार्यक्रम दिए गए, तो एक लगाव उनका भी हुआ, गुणात्मक रूप से उनमें जागृति आई।
1: अच्छा वेद जी, हमने देखा, हम अपने आपकी तरह के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं समाज में, वे उन दिनों के चित्र में बताते हैं कि साइकिल से एक व्यक्ति जा रहा है, उसके कंधे पे रेडियो टंगा हुआ है, उससे गीत बज रहे हैं और वो सुनता हुआ चला जा रहा है, और आम तौर पे ये दृश्य दिखाई देता था।
0: हाँ, वो जमाने में क्या है कि फिल्मी गाने जो हैं
1: जी
0: वो बहुत लोकप्रिय होते थे
1: जी,
0: उस वक्त जो गाने आते थे उस दौर में उनके उन गानों का अपना एक सीधा सीधा अर्थ होता था
1: जी,
0: सरल भाषा में और संगीत से जुड़े हुए थे, बहुत एक निकटता महसूस करता था आदमी, और बाद के दौर में जो गाने हैं वो उसका अर्थ बहुवर्ती हो गए या बहुत दुरूह किस्म के हो गए, या संगीत का जो प्रदेश आया उसने उनका अर्थ या उनका प्रदेश बदल दिया। हम जब पढ़ा करते थे तो कॉलेज में किसी को भी टॉन्ट करना और सब करना है सब बहुत
1: आप लोग तो युवा थे बिल्कुल जब आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। जी जी जी। आज के दौर में मीडिया ढेर सारे सोर्स हो गए हैं मीडिया के, ऐसे में आकाशवाणी को अपनी गरिमा, अपना सम्मान अपने श्रोताओं के साथ बने रहना एक चुनौती की तरह लगता है, आप क्या कहते हैं, कैसे आकाशवाणी को आगे बढ़ना होगा?
0: आकाशवाणी का देखिए उसकी एक महत्ता है, आकाशवाणी में जब समाचार आया करते थे तो हम जैसे लोग जो छात्र होते थे तो न्यूज का वक्त होता था, समाचार आएंगे तो कोशिश करके सुनते थे
1: जी।
0: और जुड़े रहते थे उस, तो वो जो वह दौर था वो अभी उस तरह से कटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे आकाशवाणी आज भी हमको परिचित कराता है और समाचार आते हैं समाचार के क्षेत्र में
1: जी।
0: और कार्यक्रमों के क्षेत्र में जो है वो हमेशा जो स्थानीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको, या जनजातीय संस्कृति है उसको स्वर

0: दिन में आज भी आकाशवाणी कहीं पीछे नहीं है।
1: जी
0: आकाशवाणी में लगातार कार्यक्रम अभी भी होते हैं। आकाशवाणी में जो काम कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, और निसंदेह वो सांस्कृतिक परिदृश्य है जो हमारे क्षेत्र का और खासकर सरगुजा अंचल का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उसको बनाए रखते हुए और उसकी उसको आगे बढ़ाने के लिए उसने खासकर जनजाति क्षेत्रों में और जो क्षेत्र जनजाति समाज के लोग हैं उनके स्वाभिमान को बढ़ाने में तो आकाशवाणी किसानी नहीं है।
1: वेद जी, एक एक अंतिम सवाल कि क्या आप हमारा मार्गदर्शन करना चाहेंगे? आप कुछ अपने अमूल्य सुझाव देंगे कि आने वाले समय में आकाशवाणी के प्रसारण की क्या रूपरेखा होनी चाहिए? इस लोक लोक क्षेत्र के विशेष संदर्भ में ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं।
0: दरअसल क्या है कि एक घालमेल हो रहा है कहीं न कहीं वो संस्कृति के नाम पे, कार्यक्रमों के नाम पे, वो ये कि जो आज से 50 साल पहले या 20 साल 30 साल पहले जो संस्कृति का लेवल था, जो लेयर था, उसको हम बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जबकि दुनिया या विकास जो है वो कभी ठहरता नहीं है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो संस्कृति के जो नए तौर तरीके, जो नए लेवल आ रहे हैं, उनको हमको अपनाना पड़ेगा। हम आज भी यदि जो पुराने कर्मा या डोमपेज गीत हैं सब हैं, वो कर्मा और डोमपेज तो गाएंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में उसका क्या अर्थ है, वो क्या होना चाहिए, इसको भी तो ध्यान देना
1: जी। हम उसका करते क्या है समय के हिसाब से उसका आधुनिकीकरण,
0: हाँ आधुनिकीकरण होता रहना चाहिए।
1: वेद जी, सवाल ढेर सारे हैं, बात करने का बहुत मन है, लेकिन समय की हमारी सीमा है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपना अनुभव हमसे साझा किया, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री विविधा कार्यक्रम के आज के इस क्रम में श्रोताओं, आप सुन रहे थे अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार श्री वेद प्रकाश अग्रवाल से अंजनी कुमार पांडे की बातचीत। इस कार्यक्रम की अगली कड़ियों में हमारे साथ होंगे कुछ और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने रेडियो प्रसारण के इस सुनहरे दौर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आकाशवाणी अंबिकापुर को अपना सहयोग दिया। तो सुनते रहिए कार्यक्रम स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग था अंजनी कुमार पांडे का और प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। तो आप सभी का स्वागत है, नमस्कार, बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। श्रोताओं, हमारे देश भारत और दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम मनाए जाते हैं। ये उत्सव, ये दिवस हमारे समाज को जोड़े रखने और अपने इतिहास को याद रखने के साथ साथ भविष्य को भी बेहतर बनाते हैं। साथ ही साथ इनका जो उद्देश्य होता है वो कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं पर समाज का ध्यान खींचना भी होता है। आज एक ऐसा ही दिन है। आज यानी कि 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। आधुनिक समाज में आए दिन बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम करने के साथ साथ उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये दिन मनाते हैं। श्रोताओं, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जैसे जैसे हम आधुनिकता और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें संवेदनाएं और करुणा का भाव कम होता जा रहा है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के प्रति हो रही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना। तो बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, आइए इन बातों के बीच कार्यक्रम गुंजन में सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। आवाज़ें हैं हरिहरन, घनश्याम रघुवंशी, प्रीतम राव और संतों की। गीत लिखा है रविंद्र रावल ने।

खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आकर आपके चेहरे को छूता है तो बताइए, आपका मन खुश हो जाता है ना? लेकिन ये हवा सिर्फ हमें तरोताज़ा नहीं करती, बल्कि हमारे घरों को रोशन भी कर सकती है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला भी कर सकती है। इतना ही नहीं, ये हवा प्रकृति में कार्बन उत्सर्जन कम करने में और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के विकल्प का भी काम करती है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। आज यानी कि 15 जून की एक और विशेष बात ये भी है कि आज वैश्विक पवन दिवस है। ये दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा को एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आइए अब अपनी बातों को थोड़ा सा रोकते हैं और सुनते हैं आज कार्यक्रम गुंजन में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है हम तुम, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत जतिन ललित का है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: श्रोताओं, खेल जगत से एक शानदार और गर्व भरी खबर आई है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम को 64 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मुकाबले की सबसे बड़ी जो स्टार रही, उनका नाम है दीप्ति शर्मा। इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इतना ही नहीं श्रोताओं, दीप्ति शर्मा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वे अब महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। श्रोताओं, ये उपलब्धि न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि देश की लाखों बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। दीप्ति शर्मा और भारतीय महिला टीम को इस शानदार जीत और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ढेरों बधाइयाँ। और कार्यक्रम गुंजन को आगे बढ़ाते हैं, बातों के क्रम को थोड़ा रोकते हैं और अब सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म बॉम्बे से। आवाज़ है हरिहरन की, गीत लिखा है महबूब ने और संगीत AR रहमान का है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन स्वाति के साथ। मानसून ने धीमी सी दस्तक दे दी है। चिलचिलाती गर्मी के बाद तपती धरती को शीतलता पहुंचाने के लिए प्रकृति में मानसून की आहट सुनाई दे रही है। हमारे किसान भाइयों की आंखों में चमक है ये आहट। मानसून सिर्फ बारिश ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश की 70% से अधिक वर्षा इसी मौसम में होती है। इसके आने से किसानों के चेहरे खिलते हैं और नदी तालाबों, बांध और भूमिगत जल स्रोतों में जल का स्तर भी बढ़ता है। इसलिए तो कहा गया है, जल ही जीवन है। इन बातों के साथ साथ आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम गुंजन की इस अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है ताल, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत AR रहमान का है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ कार्यक्रम गुंजन यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार अब हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बस्तर के हर जनजाति परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त। आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन।

0: अंतिम दिन जीते 4 पदक। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में कल एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर के लोग कई दशकों तक विकास से दूर रहे। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव-गांव में राशन दुकानें खोली जा रही हैं और सुरक्षा शिविरों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ वनोपज के मूल्य संवर्धन पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में हर परिवार को 2-2 गाय या भैंस दी जाएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लंबे समय तक उपेक्षा के कारण नक्सलियों ने बस्तर को अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। वहीं उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया है और अब बोली का जवाब बोली से, यानी गलत नैरेटिव का जवाब सही जानकारी से दिया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं की नक्सलियों ने नसबंदी कर दी थी, उनकी नसबंदी खोलने का प्रयास किया जा रहा है और जिन मामलों में यह संभव नहीं होगा, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। समारोह को पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर 13 राज नहीं आएगा रे पुस्तक के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू होगी। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंडलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बस्तर के हर जनजाति परिवार को 2-2 गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त। आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, अंतिम दिन जीते 4 पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, वक्त है तापमान सूचना का। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना समाप्त।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में मैं शक्ति आप सभी का स्वागत करती हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने प्रिय रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे आपसे सीधी बातचीत, जानेंगे आपके विचार, आपका हालचाल और आपकी पसंद के गीतों की फरमाइश भी सुनेंगे। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं आज हमें पहला कॉल करने वाले श्रोता कौन है।
1: हेलो।
0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूं।
0: जी श्रवण कुमार साहू जी,

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में मैं शक्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने प्रिय रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे आपसे सीधी बातचीत, जानेंगे आपके विचार, आपका हालचाल और आपकी पसंद के गीतों की फरमाइश भी सुनेंगे। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं आज हमें पहला कॉल करने वाले श्रोता कौन है।
1: हेलो।
0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: नमस्कार। मैं
0: नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूं।
0: जी श्रवण कुमार साहू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत दिनों के बाद पहली बार लगा है
0: जी।
1: और मैं अंबिकापुर आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ और ईमेल की गूंज है, चिट्ठी पत्री है और फोन इन कार्यक्रम ये लगभग मैं सुनते ही रहता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका आकाशवाणी का।
0: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वैसे इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: अभी तो गर्मी का मौसम है, अब खेती बाड़ी का काम चालू है, आटा है और खेत की साफ सफाई है, इसी काम में लगी हुई है अभी।
0: मौसम कैसा है अभी आपके यहाँ, बारिश शुरू हुई या फिर नहीं?
1: कल से बारिश हुई है लेकिन उतना बारिश नहीं हो पाई है।
0: अच्छा, हल्की
1: बारिश। इतना भी जरूरत है उस हिसाब से अभी गर्मी का मौसम है और उमस टाइप का है।
0: हाँ, अभी तो छत्तीसगढ़ में सभी जगह उमस का ही माहौल है
1: और उमस में हाल और बेहाल लगता है, थोड़ा सी परेशानी और बढ़ जाती है।
0: कोई बात नहीं, कुछ दिनों में बारिश होगी और मौसम अच्छा हो जाएगा, है ना?
1: हाँ, तभी राहत मिलेगा।
0: और हमारे आकाशवाणी अंबिकापुर का कौन सा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद है?
1: मुझे तो ईमेल की गूंज है, चिट्ठी पत्री है और ये फोन इन कार्यक्रम है, ग्राम सभा है, सभी कार्यक्रम को लगभग मैं सुनता हूँ, सभी कार्यक्रम पसंद आता है। इसमें हमारा भरपूर मनोरंजन होता है, ज्ञान मिलता है, सीख मिलता है, प्रेरणा मिलता है, सभी प्रकार का समावेश रहता है।
0: श्रवण जी, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाए हम आपको?
1: फिल्म मोहब्बते का गीत सुना दीजिए, हमको हमी से चुरा लो।
0: जी बहुत सुंदर गीत आपने पसंद किया है, अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आपका भी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत। कौन बोल रहे हैं आप? कौन से स्थान से बोल रहे हैं?
1: मैं बनियापारा धमतरी से बोल रहा हूँ, रामचंद्र माखीजा काफिर भाई।
0: जी स्वागत है रामचंद्र जी आपका कार्यक्रम में।
1: जी जी धन्यवाद, शुक्रिया।
0: और बताइए आपके घर में कौन कौन है रामचंद्र जी?
1: हमारे घर में हम दोनों ही हैं मियाँ।
0: आप दोनों ही कार्यक्रम

0: सुनते हैं?
1: जी
0: कब से सुन रहे हैं रामचंद्र जी कार्यक्रम आकाशवाणी का आप?
1: हम लोग तो बहुत पुराने सुनते हैं आपका, माधवी जी हैं पुराने हैं बहुत है, यानी बचपन से लेके हमको रेडियो के जन्म घुट्टी पिला के पिला दी गई है।
0: अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या करते हैं आप रामचंद्र जी?
1: मेरा छोटा सा रेडीमेड का काम है।
0: अच्छा,
1: जैसे सिले सिलाए वस्त्र रहते हैं ना, जीन्स शर्ट नाइटी, साइड में गमछा वगैरह हो गया, गर्मी में कोई लेता है जैसे। क्या है, पहले थान कपड़ा रखते थे, हाथ से सिलवाते थे ना जैसे टेलरों के यहाँ, तो अब क्या है रेडीमेड का चलन ज्यादा है, कुछ ही लोग हैं जो सिले सिलाए पहनते हैं, सिलवा कर पहनते हैं। आजकल क्या है, बच्चा जैसे पैदा होता है जीरो साइज से लेके बड़ों तक का रेडीमेड का चलन हो गया हर चीज में, यानी वेरायटी में और कलर से डिजाइने भी अच्छे अच्छी आती है।
0: तो अभी आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है गर्मी के दिनों में?
1: ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से।
0: बहुत अच्छी बात है। आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: एक बढ़िया गीत है गमन का, सीने में आंखों में चुभन, दिल में तूफान से क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है।
0: हम आपकी पसंद का ये गीत आपको अवश्य सुनवाएंगे। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: नमस्कार बहना।
0: नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं आप?
1: आपका नियमित श्रोता सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से।
0: अच्छा, बहुत दूर से आपने कॉल किया है हमें।
1: जी, मैं आपका चैनल सुनता हूँ और फोन भी पहले भी करता रहा हूँ।
0: जी, आपके नियमित ही हमें पत्र प्राप्त होते रहते हैं और ईमेल भी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: सुरेश जी।
1: हाँ जी।
0: आपके जीवन का कोई पसंदीदा गीत है जो आप हमेशा सुनना चाहते हैं?
1: खासकर रफी साहब और लता जी के गाने हैं, वो तो एक जादू कर देते हैं।
0: जी सही कहा आपने।
1: हाँ जी, मैं रफी साहब का ही गीत सुनना चाहूँगा।

0: बताइए
1: जी। कर्ज
0: जी
1: और गीता जी, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आप, मुझे बहुत ही गाना पसंद है जी, बहुत ही ज्यादा।
0: आपको ये गीत इतना पसंद है तो हम इसको आपको अवश्य सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: आपका शुभचिंतक छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ बहन जी। मेरा नाम बाहुबली है बहन जी।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।
1: क्योंकि हमारे जन्म के साथ ही माता पिता ने हमारा नाम बाहुबली रखा और जब से मूवी आई तब से लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये बाहुबली नाम कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे, मगर ये सत्य है कि मैं बचपन से मेरा नाम बाहुबली है।
0: बहुत ही अच्छा नाम है आपका बाहुबली जी। आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मेरी पत्नी है, दो बेटे हैं, दो बहुए हैं, दो पोते हैं, ऐसा एक छोटा सा परिवार है बहन जी मेरा।
0: बहुत अच्छा।
1: वैसा तो अभी मेरी उम्र 84 साल चालू है बहन जी, और बचपन से रेडियो के प्रति, आकाशवाणी के प्रति एक रुचि लगाव होने के कारण आज तक वो बोले तो छूट नहीं पा रहा है।
0: इतने लंबे समय से आपकी आदत है रेडियो सुनने की, तो ऐसे आदत कैसे छूट जाएगी? और छूटनी भी नहीं चाहिए, आप लगातार ऐसे ही रेडियो सुनते रहिए। आप जैसे वरिष्ठ जन हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, इससे हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
1: आकाशवाणी ने आरोग्य, खेती बाड़ी और शिक्षा, विज्ञान, ये सभी बातों का ज्ञान हमारे श्रोता वर्ग को दिया है। मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जीना इसी का नाम है।
0: कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत। सबसे पहले अपना नाम बताइए और स्थान।
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, फिरवा बांधा बिना तरह से। हेलो,
0: योगेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप योगेश जी?
1: खेती बाड़ी का मूल काम है जी।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप?
1: अभी धान है, अरहर है जी, और बाड़ी में सब्जी वगैरह।
0: अच्छा, आप पुराने गीत पसंद करते हैं या नए गीत?
1: पुराने गीत ज्यादा पसंद करते हैं, और 90s के भी काफी अच्छे लगते हैं
0: तो आपका
1: जी।
0: पसंदीदा कोई गायक या गायिका है?
1: अब जैसे 90s में कुमार सानू जी हैं, और पुराने में तो फिर वही रफी साहब और किशोर कुमार जी, ये सब, लता मंगेशकर हैं, ये सभी मतलब बहुत हमेशा अच्छे लगने वाले गायक हैं।
0: आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: फिल्म है दाग दी फायर, और गीत के बोल है दिल दीवाना न जाने कब खो गया।
0: कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: जी हाँ, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: संजीत कुमार बोल रहा हूँ, परस गाँव कुंडागाम बस्तर से।
0: जी संदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम।
0: क्या करते हैं आप?
1: पढ़ाई करता हूँ मैम।
0: कॉलेज में?
1: जी अभी एमएससी कम्प्लीट हो गया मैम, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी चल रहा है।
0: अच्छा अच्छा, व्यापम या पीएससी?
1: व्यापम कर रहे हैं।
0: आकाशवाणी सुन के कुछ आपको उपयोग में आता है आपके एग्जाम की तैयारी में?
1: बहुत सारी जानकारी मिल जाती है मैम आकाशवाणी सुन के।
0: समाचार सुनने से आपको प्रादेशिक और समाचार संध्या या समाचार प्रभात जो है आप सुनेंगे तो आपको आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत फायदा मिलेगा।
1: जी मैम, जो करंट अफेयर भी उसकी जानकारी बहुत सारी मिल जाती है।
0: कितने वर्ष हो गए आपको आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनते हुए?
1: आकाशवाणी से जुड़ा हुआ तो मैं 15 से 20 साल हो गए मैम।
0: अच्छा, बहुत खूब।
1: पहले तो रेडियो लेके घूमते थे, अब तो मोबाइल पे आ गया तो सुविधा हो गया। पहले बहुत नेटवर्क का बहुत सारा दिक्कत होता था, जैसे मौसम में होता था तो रेडियो अच्छा से आवाज नहीं आता रेडियो में।
0: अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म सर का सुना दीजिए मैम।
0: जी कौन सा गीत?
1: सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन।
0: बहुत अच्छा, मौसम के अनुकूल आपने गीत चुना है। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: राम साहू बात कर रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
1: दुर्गा राम जी, कैसा है मौसम आपके अभी मध्य प्रदेश में?
0: कल तो बारिश हुई है मैडम, एक घंटे तक बारिश हुई है बढ़िया, और उसी कारण से मौसम में तापमान में कमी है, बढ़िया ठंडकता का एहसास है आज।
1: अच्छी बात है।
0: और सभी किसान लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, फसलों की फसल बोने की तैयारी कर ही रहे हैं।
1: तो अभी बरसात आने वाली है?
0: हाँ, बरसात आने वाली है और कल बारिश हुई है तो मतलब आगाज हो चुका है
1: जी।
0: बाकी मौसम अपने जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है इसमें 15 जून से बता रहे हैं, 15 से 22 जून की अवधि में।
1: दुर्गा राम जी, इस सप्ताह कोई अच्छी बात जो आप सभी से साझा करना चाहते हो?
0: हाँ, अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो बरसात जैसे एक समय हरियाली का मौसम तो होता ही है, तो वैसी ही अनेक बीमारी जो जल जनित बीमारियां हैं उनको भी लेके आ जाती है, और जैसी मौसम बदलता है तो प्रकृति जैसी संतुलन बनाने का प्रयास करती है, वैसी हमारा शरीर भी संतुलन बनाने का काम करता है, और क्या है प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो किसी का तो अधिक से जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। तो हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए और जहाँ तक हो सके गर्म, मतलब ये हो कहना चाहिए कि जैसे बाहर निकल रहे हैं तो पेड़ के नीचे खड़े ना हो। ये नुकसान हो सकता है आंधी से, बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है।
1: बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई हैं श्रोताओं के लिए। अब अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो हम आपको सुनाएं।
0: मैडम जी, आज एक कार्यक्रम में फिल्म का नाम है हमारा ही प्यार के, वहाँ कोई भी गीत सुना दीजिए, सभी गीत अच्छे हैं।
1: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: आपका नियमित श्रोता धीरज रवारी बात कर रहा हूँ गुजरात से।
0: जी धीरज रवारी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद। कितने प्रयत्न के बाद यानी कितने अंतराल के बाद फोन लगा, बहुत आनंद और हर्ष की यानी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। एक तो आप इतनी दूर से आकाशवाणी अंबिकापुर में आपने कॉल किया है, उसके लिए भी आप हमारे नियमित श्रोता हैं, इसके लिए भी, और आपका प्रयत्न आज सफल हुआ इसके लिए भी
1: धन्यवाद
0: जी।
1: इतना स्नेह आकाशवाणी अंबिकापुर देते तो हमारा यानी हृदय गदगदित होता है, तो इसके लिए आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धीरज जी। क्या करते हैं आप धीरज जी?
1: जैसे देखा जाए तो मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और आकाशवाणी से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। अभी मेरी आयु 57 साल है, 17 साल से जुड़ा हूँ यानी बहुत सालों से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ।
0: धीरज जी, संगीत आपके जीवन में क्या महत्व रखता है?
1: बहुत यानी महत्व रखता है, क्योंकि संगीत के जरिए कई बार हमारा जो मन में कई बार हलचल मरती हुई, कभी कभी मन का जो बोझ होता है वो संगीत के जरिए हल्का होता है। और यानी एक संगीत और एक प्रकृति, इस दोनों के बीच में अगर आप खड़े हो तो आपको कितना भी दर्द हो तो वो चला जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आज कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तो इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल।
0: आपसे बात करके हमें बहुत हर्ष प्राप्त हुआ, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत।
1: हाँ नमस्कार मैडम, मैं सुनगरा पारस पार से राम खिलावन सिंह पेंड्रा बोल रहा हूँ।
0: राम खिलावन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
1: हाँ
0: कैसा मौसम है आपके यहाँ अभी?
1: अभी ऐसी तेज धूप एकदम किया हुआ है, अभी मौसम वही कभी कभी बदल जाता है तो सेकेंड टाइम मतलब धूप वो चीज करता है ना, हवा भैया तूफान।
0: जी जी, क्या करते हैं आप राम खिलावन सिंह जी?
1: तो सुनगरा में कपड़ा सिलाई करता हूँ मैडम जी।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। आकाशवाणी अंबिकापुर के कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: तो यही आपकी गीत आपकी पसंद है वो इच्छा फरमाइश।
0: चलिए, आज आप कौन सा गीत सुनेंगे कार्यक्रम में बताइए।
1: कुमार सानू की आवाज में कोई सा भी गाना चीज सुना दीजिएगा
0: जी। बहुत सुंदर,
1: दोस्तों का नाम भी बता रहा हूँ, प्रेम साई रजवाड़े जी हैं।
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा राम खिलावन जी।
1: मैडम आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय

0: के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लुचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हुर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हुर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद

0: हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वसनीय विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, उदित नारायण की आवाज़ में दस्तक फिल्म से। बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत दिया है राजेश रोशन ने और इस गीत के लिए फरमाइश मिली है हमें आप सभी की। ग्राम राजापुर लकड़ापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी मरकाम, रूपमती मरकाम का पत्र मिला है। जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर, प्रशांत रत्नेश प्रजापति, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े का। सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, शिव भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैगरा का। ग्राम पंचायत खोंदला और जनपद पंचायत उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, कलेश्वर सिंह, सुमार साय पैकरा। ग्राम पंचायत खोड़री पोस्ट सलका विकास खंड उदयपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आशीष कुमार पैकरा, नवनीत कुमार पैकरा, निर्मल कुमार पैकरा,

अंचल सिंह पैकरा, रंजीता सिंह पैकरा, रीना सिंह पैकरा, श्वेता सिंह पैकरा, ग्राम परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया, अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, वैष्णो कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौण, मोहम्मद शादाब खत्री, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन। आप सभी ने सुनना चाहा है इस गीत को। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत दस्तक फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे दस्तक फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज में। कार्यक्रम में अगला गीत अब सुनिए, चमत्कार फिल्म से। इस गीत को पसंद किया है इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती सीतल राजेश, बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा, दामिनी वर्मा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश जसवाल, आकाश निभवानी, पप्पू जसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और पूरा श्रीवास्तव परिवार, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तानिया, आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में, चमत्कार फिल्म से।

कार्यक्रम में अब सुनिए यस बॉस फिल्म से ये गीत। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में, बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत जतिन ललित का है और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक चांदनी, दीपा और कृति ने पसंद किया है इस गीत को। बेरडी से पत्र लिखा है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेंद्र साहू ने। शादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी

पिपरिया से दुर्गा राम साहू, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी प्रवीण साहू, सीएल यादव ने ग्राम नवा गांव मुढ़ीपार, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से मोहन साहू, श्रीमती रुखमणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तजेश्वर, टाकेश्वर, कुशाल और तुलेश साहू ने डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, ग्राम बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा ने गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा राठौर ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यस बॉस फिल्म से गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ों में। एक बार फिर सुनिए कुमार सानू अलका याग्निक को फिल्म परदेश में। आनंद बख्शी की रचना संगीत नदीम छवन का, और इस गीत को पसंद किया है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या भाई सुच्चा पाठक ने। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर राही, सरिता घुआणकर, सिद्धांत घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश घुआणकर, वैशाली घुआणकर, श्वेता सुमित घुआणकर, ध्वनि घुआणकर ने। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक ने। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदीहा खान, असमा सालिया, शोएब खान। पोत्रा से मुस्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई ने। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर ने। इसे गीत को पसंद किया है ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा ने। चटौदा सारागांव से शुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा ने। मायापुर अंबिकापुर से रुपेश कुमार सिन्हा और संस्कार सिन्हा ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर ने। तो सुनिए आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म परदेश से।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे।

0: में
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: टेकर में कहन की दे ट्रैक्टर लबिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर करू पजर नी बढ़ी नहीं
1: हाँ
0: ताहा तो
1: राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हाँ
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी ये सुन सकते
0: है। हाँ, अभी तो शुरू है कि साहे।
1: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान वाड़ी।
2: इस संदेश के बाद कार्यक्रम में आइए गीत सुनते हैं कुमार सानू का गाया हुआ 1942 अ लव स्टोरी से बोल हैं जावेद अख्तर के संगीत आरडी मर्मन का है और इस गीत को पसंद किया है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार रंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां ने बेरड़ी से हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक करमकर प्राची करमकर तनु करमकर ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह श्रीमती उषा सिंह प्रियंका पूजा सिंह लीलू रितु सिंह ऋषभ सिंह ने बालोद बंगला मटिया से शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रैंबिका लीना अंशु आशुतोष अंगारे ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ने एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी शोभा भूपेंद्र रघुवंशी बबीता सुरेंद्र रघुवंशी पूजा विक्की रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी गणेश कार्तिक खर्चे संजना परी खर्चे ललिता नारायण खर्चे ने तो आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत

1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत अभी आप कुमार सानू की आवाज़ में सुन रहे थे। अब सुनते हैं परदेसी बाबू फिल्म से गीत, कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज़ों में, गीत और संगीत आनंद राज आनंद के हैं और इस गीत को पसंद किया है नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा वर्मा, दामिनी वर्मा, बाबा कोटी उफरा से प्रेम साहू, यमुना साहू, तुलसी साहू, हेमलता साहू ने, अड़ार नांदघाट से मखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी वर्मा, भूपेश वर्मा, दीपेश वर्मा ने, भोरसुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी संतोषी, चिराग नेहा सेन और पूरा परिवार, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू ने, सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन ने, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, ये श्रोता साथी हैं महादेव घाट अमलेश्वर से, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

परदेसी बाबू, इस फिल्म का गीत अभी आप कविता कृष्णमूर्ति उदित नारायण की आवाज़ों में सुन रहे थे। अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं डर फिल्म से गीत उदित नारायण की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना, संगीत शिव हरि का है। और पसंद किया है इस गीत को जरुण वरुण महाराष्ट्र से, बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक युवराज ने, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमेश एवं सतीश मुकेश साहू ने, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार ने, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी ने, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला दादी ने, जामभरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, परभणी से गणेश ने, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विकी नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन ने, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमित सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल ने। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत डर फिल्म से।

इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा

0: के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंट लेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वन विभाग के अनुसार जंगलों के दरवाजे पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर से दोबारा खोले जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 241 बस्तर बटालियन के सेडवा स्थित वाहिनी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बटालियन के 24 अधिकारियों और जवानों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की टीम ने शिविर में सहयोग किया। इस दौरान जवानों ने नियमित रक्तदान और समाज में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी, 28 मई 2026 को

0: उमंग कार्यक्रम सुनाया। इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
1: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई
0: आपको। भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटियां का।

0: का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है।
1: आदरणीय अजीत जी व भीमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
0: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
0: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है, आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा फेसबुक लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें

0: पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
2: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
2: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
2: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था।

0: लिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
1: आ गया
2: जॉर्ज, दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
3: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
3: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
3: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
3: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
3: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
3: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
3: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
3: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
3: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
3: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी।

0: रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो।
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं,

0: मेरे बाकी पैसे।
1: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
3: क्या सब फीस जमा कर चुके?
0: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा।

0: बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
1: माँ,
2: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
2: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
2: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
2: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
2: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा।
1: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
2: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा।
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। आप सभी श्रोताओं को स्नेहिल नमस्कार। शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन में आज के अंक में आप सभी के साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी पूनम उपाध्याय। साथियों कहते हैं जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। यह केवल सांसों का चलना नहीं बल्कि हर पल को महसूस करना, हर अनुभव से सीखना और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। जिंदगी कभी सुबह की पहली किरण जैसी उजली लगती है तो

भी ढलती शाम की तरह थोड़ी उदास। कभी यह हमें अपनों के साथ हंसी के अनगिनत पल देती है, तो कभी अकेलेपन के कुछ गहरे सबक सिखाती है। हर एक दिन साथियों अगर एक जैसा हो जाएगा तो जीवन का सौंदर्य ही खो जाएगा। आज हम आपसे जिंदगी पर ही करते हैं कुछ बातें और सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा। देखिए ये गीत हमें क्या कहता है।

जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आनंद बख्शी की ये रचना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजों में फिल्म मेरी जंग से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। साथियों, जिंदगी हमें सिखाती है कि खुशियां स्थायी नहीं होते, कहीं दुख तो कहीं सुख होता है, और दुख और सुख हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसलिए जब समय हमारा अच्छा हो तो हमें विनम्र रहना चाहिए, और जब कठिन समय आए तो धैर्य बनाए रखना चाहिए।

सुमन कल्याणपुर, अनवर और कमलेश अवस्थी की आवाजों में आप सुन रहे थे नसीब फिल्म से गीत। मित्रों, अक्सर हम जिंदगी को बहुत दूर तलाशते हैं, बड़ी सफलताओं में, ऊंचे सपनों में या दूसरों की नजरों में, अपनी पहचान बनाने में। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। माँ की आवाज में, पिता के विश्वास में, दोस्तों की हंसी, बच्चों की मुस्कान में और अपनेपन के एहसास में। जिंदगी का हर पन्ना साथियों एक किताब की तरह है, जिसका हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ पन्नों में खुशियाँ होती हैं और कुछ पर संघर्ष की दास्तान, मगर हर पन्ना हमें कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ा देता है।

0: कभी तो हंसाए।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
3: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे आनंद फिल्म से गीत मन्ना डे की आवाज में। साथियों, सबसे खूबसूरत बात जिंदगी की यह होती है कि यह हर एक दिन हमें नया अवसर देती है खुद को बेहतर बनाने का, रिश्तों को संवारने का, अपने सपनों को सच करने का। इसलिए बीते कल का पछतावा और आने वाले कल का चिंता छोड़कर आज को जीना सीखना सच्ची जिंदगी है। किसी ने कहा है, जिंदगी कोई आसान किताब नहीं होती, हर पन्ने पर खुशियों की बात नहीं होती, कुछ दर्द भी होते हैं नसीब में, वरना इंसान की पहचान नहीं होती।

क्रांति फिल्म से गीत लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे। संतोष आनंद के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। साथियों याद रखिए, जिंदगी लंबी हो यह जरूरी नहीं है, जिंदगी खूबसूरत हो यह ज्यादा जरूरी है। हर पल को प्रेम, अपनापन और कृतज्ञता के साथ जिए, क्योंकि यही पल आगे चलकर हमारे सबसे सुंदर याद बनते हैं। तो आइए साथियों, जिंदगी को सिर्फ बिताए नहीं, उसे दिल से खुल कर जिए, महसूस करें और जिंदगी के हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ अपनाएं। ये जिंदगी बड़ी अजीब कहानी है, कभी धूप है तो कभी ठंडी रवानी है, जो गिरकर संभल जाए उसी ने असली जीत पहचानी है।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप मिस्टर इंडिया फिल्म से गीत, और इसी गीत के साथ शीर्षक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन का एक बजा है, समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए

0: कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियान, फ्रांस।
1: अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के

0: समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मैक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में आइए सुनते हैं धान में खरपतवार नियंत्रण विषय पर ये जानकारी।
2: देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में की जाती है। प्रायः सभी राज्यों में यह फसल उगाई जाती है, किंतु जहां अधिक वर्षा और सिंचाई का प्रबंधन है वहां पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वर्तमान में धान का उत्पादन लगभग 10 करोड़ टन पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अधिक पैदावार देने वाली खाद एवं सिंचाई का अधिक उपयोग करने में सक्षम धान की उन्नत किस्मों के प्रचलन से लगभग पिछले 2 दशकों में धान की पैदावार में व्यापक वृद्धि हुई है। फिर भी इसकी औसत पैदावार काफ़ी कम है। हमारे देश में धान की खेती मुख्यतः 3 परिस्थितियों में की जाती है: वर्षा आश्रित उपजाऊ भूमि पर, वर्षा आश्रित निचली भूमि और सिंचित धान की भूमि पर। ऊंची भूमि में जहां इसकी खेती वर्षा पर आधारित है वहां खरपतवार नियंत्रण एक गंभीर समस्या है। यदि इनका समय पर नियंत्रण नहीं हुआ तो फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में धान की बुआई या रोपाई के पहले खेत की मचाई कर देने से खरपतवारों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। धान की फसल के प्रमुख खरपतवारों की बात करें तो विभिन्न प्रकार से की गई धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। वर्षा आश्रित उपजाऊ भूमि में प्रायः एक वर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवारों की भरमार होती है, जबकि निचली भूमियों में एक वर्षीय घासें, मोथा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाते हैं। धान की फसल में पाए जाने वाले खरपतवारों को हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। स्कूल के खरपतवारों की चौड़ी पत्तियां और मुख्यतः 2 बीजपत्री होती हैं। स्कूल के खरपतवारों का प्रकोप मुख्यतः वर्षा आश्रित सीधी बोने वाले धान में अधिक होता है और इसके अतिरिक्त वर्षा आश्रित निचली भूमि में इस प्रजाति के चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार ज़्यादा होते हैं। घास कुल के खरपतवार। इस कुल के खरपतवारों की पत्तियाँ पतली और लंबी होती हैं, जैसे कि पालक, कोदो, दूब घास आदि। मोथा कुल के खरपतवारों की भी संख्या ज़्यादा होती है। स्कूल के खरपतवार की पत्तियां लंबी, तना तीन किनारों वाला तथा ठोस होता है। जड़ों में गोल गांठें पाई जाती हैं। ये गांठें भोजन इकट्ठा करने और नए पौधों को जन्म देने में सहायक होती हैं। खरपतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है।

0: धान की फसल में खरपतवारों से होने वाले नुकसान को 15-85% तक आंका गया है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है, परंतु यह नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि धान को किस प्रकार से उगाया गया है। प्रायः सीधे बोए गए धान में रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक नुकसान होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणुओं एवं कीट व्याधियों को भी आश्रय देते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज धान बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता भी खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धानों में 20-40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 5-15 किलोग्राम फास्फोरस और 15-50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4-12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1-13 किलोग्राम फास्फोरस तथा 7-14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अवशोषित कर लेते हैं तथा धान की फसल को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं। धान की फसल में खरपतवारों से नुकसान खरपतवारों की संख्या, किस्म, फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। खास कुल के खरपतवार जैसे सांवा, कोदो आदि फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बाद की अवस्था में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। धान की फसल का मुख्य खरपतवार सांवा की संख्या ज़्यादा होने पर फसल को प्रभावी नुकसान होता है। फसल के पौधे अपनी प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, अतः फसल को इस अवस्था में खरपतवार रहित रखना बड़ा जरूरी होता है। सीधे बोए गए धान में रोपाई के 30-35 दिन बाद तथा रोपाई वाले धान में 30-45 दिन बाद खरपतवार की प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है, अतः क्रांतिक अवस्था में ही फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से बहुत जरूरी है तथा फसल का उत्पादन अधिक प्रभावित न हो इस पर नियंत्रण रखना बड़ा जरूरी है। खरपतवारों की रोकथाम ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवारों को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से करें। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के लिए किसान भाई कई तरह की विधियां अपनाते हैं, जैसे यांत्रिक विधि या फिर गहरी जुताई द्वारा या फिर अन्य विधियों द्वारा। किसान भाई खरपतवारों का नियंत्रण करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: धान में खरपतवार नियंत्रण विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी बहनों के लिए कार्यक्रम घर गोसाइन।

राम राम, जय जोहार। घर गोसाइन कार्यक्रम सुनने वाला जम्मू बहनी मनला, संगी मनला, किस्मतिया बहन के राम राम, जय जोहार करत हो। आओ देखी डगरे हाथ रहे ताज में देखे ना कि लैका मन आमा तरी नगदे कन खड़ा होए किया, ओदे पखना मन में मार मार के आओ कहूँ तनिक हवा चले तो गिरेल नहीं आमाला, तेला बीच बीच के नगद खवाई करता है। अब देखी नगदे धारा महर फरीसा है, जम्मो जगह जम्मो पेड़ में देखिए कि कोई है पेड़ हर बाचिस नहीं है जिनमें आमा हर नहीं फरीसा, वह पकता है। पके के बाद जो टपकेल ना और ला बीछे पर जो लैका मन दौड़ते हैं देख के मजा आ जाए। कबो कबो हमू मन लही कस मन करेल कि भाई कतो खा रही है, लेकिन मन करेल के जो बीच के जा के खइया नहीं, जब चटिक हवा बयार करेल और कूद के आमा तरी जई है घर वार मन, जब लैका मन ला जंगात रहते हैं झीन जाबे रे डारा हर गिर जाए नीचे तो आंधी पानी करत है मन जाबे, लेकिन लैका मन नहीं मानते और ओकर मजा आनते चाहे। बहनी हो देखी ए समय में आमा पक्का खाना जो प्रकृति कर भाई ये मौसमी फल है, जेला खाना कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ के अति नहीं करना है। और बगरा झीनेज खइया भाई, वो दे कहते हैं कि भाई हमार सियान मन तो भाई हमन लगोठियाते हैं कि ढेरे झीन खइया रे।

पेट हर खराब हो जाही। तो भाई हमर तो अभी तक नहीं होइसे, लेकिन चटिक ध्यान दी है घामा में तुरंत तुरंत जो गरम गरम रहे ना पका हर एकदम उला नहीं खाना चाही। और कहते कि देख एकरे एक ही फल आए आमा, लेकिन ओकर तासीर दू ठना है। जैसे कंचा आमाला तोड़िया नहीं है, ओकर पाना बनाए के अगर लू लग गई सा है तो ओला पीहा तो भाई शरीर ला ठंडा करी और लू के जो बीमारी होला ख़त्म करी। वहीं अगर पका आमा है ओला तुरंत लाइन के बीच के अगर खाए दिया नहीं तो भाई पेट में गर्मी कर दे है, तो बगरा नहीं खाना है। और देखिए प्रकृति हर कितना मतलब सुघर अपन आप में सब चीज़ ला रखी से, कोई में गुण भी है तो अगुण भी है और वह हमन ला चेतावर भी है। हमन ला प्रकृति ला समझे के जरूरत है कि हर मौसम में जो हर फल है, चाहे देखिए अभी जाम पका भी है, जाम पेट भर कितना बढ़िया रहे, जो मधुमेह के रोगी रहते उमन ला भी खाए भर कितना बढ़िया रहे, कब्जियत ला ख़त्म करेल, रिकिम रिकिम के ओमे गुण आए। और ये दोनों फल हर ये समय में हमन ला भरपूर भेंटाएल। और मौसम के अनुसार कोई भी फल जो है अगर प्रकृति देहत है तो हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा है, लेकिन ओकर तासीर जान के और ओला कितना खाना है, ओकर मात्रा कितना होना चाहिए, ये चीज़ के हमला ध्यान देना है नहीं। और ओला अगर सही ढंग से अगर इस्तेमाल कर रही तो हमारे शरीर पर औषधीय है। बेनी हो हमारे पर्यावरण में जो हमारे प्रकृति रिकिम रिकिम के जो पेड़ पौधा हमला देना है, वो सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी सा है, हमारे शरीर पर जो है अच्छा है, बस पहचाने की जरूरत है। लेकिन हमन आजकल क्या कर रहे थे कि भाई वही प्रकृति के नाश कर दे ही, और जंगल हर घटत जाता है, वन्य जीव मन भी संरक्षित नहीं आए हैं, हमारे घर दूरा का तिरंगता है। और मैं तो यही कहूँ कि हमारे अतिक मन गोट करता न कि हमन पूजा पाठ करती सनातन धर्म ला मानती, और हमारे सनातन धर्म में भी देखिया कि प्रकृति का जो पूजा है ओला पहले प्राथमिकता दी गई से है। आजे लेके चला, आज देखिए सोमवती अमावस्या है और आज के दिन जो सोमवती अमावस्या रहल एकर महत्व ये है कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में ये तिथि के विशेष महत्व बताया गया है। काबर कि अमावस्या तिथि यदि सोमवार दिन आयल नहीं तो एला सोमवती अमावस्या कहते हैं। इमें भगवान शिव जी और अमावस्या रहल तो पितर मन कर स्मरण करल जाएल, और मन कर जो है ये दोनों संयोग एक दिन बनेल तो बड़ा पुण्य भी अगर दिन मानल जाए। आज के दिन के मान्यता अनुसार जो बिहाने बिहाने उठ के यदि तालाब में नदी में चाहे कौनो पवित्र जगह में जाए के स्नान करते हैं, ओकर बाद फिर भाई बहनी मन हमार फेरी देते हैं पीपर पेड़ कर। अब देख ली पीपर पेड़ कर हमन ओला जब फेरी दे बर रहे तो ओला खोजती ना कि भाई पीपर पेड़ रहती तो फेरी देते हैं, कोई कोई जन घर में छोटे मोटे जगाए के रखते हैं। तो आज अगर ओकर से जुड़ल है भाई ओला हमन भगवान मान के पूजा थी तो पेड़ हर रही तबे तो पूजिया। तो देखी आज के दिन जो है हमर बहनी मन ओकर फेरी भी देते हैं और भाई नहा धो करके और कहते कि 108 बार पीपल पेड़ के पूजा करके अपन श्रद्धा अनुसार परिक्रमा करते हैं। ओकर बाद कोई कोई सुख समृद्धि पर व्रत भी करते हैं। और कहते कि भाई धार्मिक ग्रंथ में भी बताया गया है कि वृक्ष जो पीपल के वृक्ष है उनमें देवता मन के निवास मानल जाए, एकर बर जो है ये दिन पीपल पेड़ कर जो है पूजा करल जाए। और संगे संगे देखिए आज जो अमावस्या कर जो सोमवती अमावस्या है ये दिन पितर मन ला भी तर्पण करते हैं और स्मरण करके जो प्राचीन परंपरा है वो पहले से चलल आता है कि पूर्वज मन ला ये दिन स्मरण करके और उनकर याद में जो जल वो अर्पण करते ना और दान पुण्य करते हैं तो मन के आशीर्वाद भी जो है वो हमन ला मिले। तो देखिए एकर पीछे एक जहाँ धार्मिक आस्था है वहाँ पर पर्यावरण पर संदेश भी आया है कि ये पर्व में सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है बल्कि प्रकृति के संरक्षण के संदेश भी घलो देता है। पीपर बरगद जैसन जो पेड़ मना है ये मनकर पूजा हमार पूर्वज मन प्रकृति के संरक्षण के संदेश बर दे रहीन कि आज के समय में जो ये पर्यावरण संकट बढ़ाता है तो ये संदेश उमन बर महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई हमला प्रकृति के जो रक्षा है ओला करना है और जंगल ला बचाना है। देखिए गोट बात तो नकदेक कर रहे हूँ और मैं अभी जब तक कार्यक्रम हो तब तक तो भाई बोलते रहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बहनी मन लाए कोठन गीत ला भी सुनवाना चाहिए। तो लेगी चले पहले गीत ला सुन लिया थी और बाद फिर गोट करबो।

हाँ, तो देखिए केदार यादव और साधना यादव कर गाल सुगर अकन गीत ला सुने, छत्तीसगढ़ी गीत रहीस। और बहनियों देखी गोट करत रहन मैं कि अभी जंगल कटाई में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुई सा है हमारे वन पशु पक्षी और जीव जंतु मन ला होता है नहीं। आज के समय में कही है कि जो वन में रहिया पशु पक्षी मना

0: ब्राह्मण के संख्या भी घटत जाता है और कई जन तो भाई विलुप्ति के कगार पे भी कई है। और देखिए जंगल हमार प्रकृति कर अमूल धरोहर है और इमें अनेक जीव जंतु मन तो रबे करते हैं। और अगर जंगलें नहीं रही तो सोच के चला कि फिर जीव जंतु मन कहाँ जग जाएं। आज धीरे धीरे जो जीव जंतु मन खत्म होता है चाहे वन्य प्राणी मन ला जो नुकसान पहुँचाता है एकर पीछे कारण भाई यही है कि हमार जंगल के जो है अवैध कटाई होता है। और मैं तो ये भी कहूँ कि कहीं कहीं जग देखिए जैसे अभी ये गर्मी के बेरा है ये समय में हमार गांव कती तो भाई आते हैं तेकर ले आप मन ला बताते हो कोटरा होगी हिरण होगी ये सब जीव जो है वो पानी पिए पर आते हैं। और लोग मन कोई कोई अवैध शिकार भी करते हैं अपन स्वार्थ पर शिकार कर लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ ला रोकना है क्योंकि यही सब कारण है कि मन कर जो प्रकृति ला जो है नुकसान पहुँचाता है जंगल के अंधाधुन कटाई कराता है अवैध शिकार कराता है संगे संगे देखिए पर्यावरण पर ला भी प्रदूषित कराता है हवा पानी जमीन जम्मो चीज़ हर तो प्रदूषित होगी है। एकर साथ साथ आऊ है कि जलवायु परिवर्तन अब हुआ था देखिए मौसम मन में बदलाव हुआ थे और देखिए कत्ते गर्मी पड़ता है अतिक मन गर्मी में जीव जंतु मन जो है वो मन भी हलाकान हुआ थे कोई कोई मर भी जाता है। और फिर ओकर बाद बरखा है तो भाई अतिक मन बाढ़ आ जाए कि ओमे भी कई ठो जीव जंतु जो है वह उमन ला नुकसान पहुँचाए। तो हमन ला सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि देखिए अगर बगरा गर्मी पड़ते हैं चाहे बाढ़ आ जाते एकर पीछे भी तो प्रकृति के असंतुलन ही है नहीं तो एक निवारण पर उपाय करना चाहिए। और एक बार क्या करना है जंगल लगाना है जीव जंतु मन के संरक्षण करना है और जितना तक प्रयास हो सके जितना बाँची से जंगल ना ओला बचाना है। हम नवा ला कतना लगा ओला कतना बढ़ा सकती ओकर तो भाई वो तो समय बताही लेकिन जितना बाँची से जंगल हो जंगल ला हमन ला तिहा करना ओला बचाना बहुत जरूरी है। आए वाला समय नहीं तो हमार बर और खतरनाक हो जाही। देखिए बहुत सारा गोड़ बात आप मन संगाव करते रहूं। आज क्या है देखिए सोमवार दिन है और सोमवार दिन जो है हमन लानथी भाई भेंटवार्ता भी लानथी कि कोई कोई चीज़ का जानकारी रहल तो ए में आज हमार शशि श्रीवास्तव बहन जग जो भेंट करीना है रमा दीदी और उनकर से बातचीत हुई चाहे कि भाई आंगनबाड़ी से काका लाभ है ओकर से काका फायदा पहुँचल तो ये वोट ला भी सुन ले थी ओकर बाद फिर आगू वोट करबो फिर
1: संगी हो। आज हमर भेंटवार्ता में आईना है शशि श्रीवास्तव बहिन और आज इनकर जग हम गोठ बात करब आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य और हमर बहनी मन कैसे ओ में से लाभ लें। तो सबले पहले तो इनकर स्वागत करत ही शशि बहिन और स्वागत है
2: राम राम जय जोहार।
1: हाँ तो बहनी देखी आज हमन जाना थी कि आंगनबाड़ी जो आहे वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गई सा है और फिर भी देखी राव जैसे आंगनबाड़ी में काम भी करत हन तो सबले पहले यही जानना चाहब कि आंगनबाड़ी का हवे और में कौन कौन वर्ग के मनसे मन लाभान्वित होता है।
2: आंगनबाड़ी भारत सरकार के द्वारा चलाल गल एक ऐसन योजना है जेकर में माँ और बच्चे दोनों लाभान्वित होते हैं। सरकार कुपोषण के दूर करे बर ये योजना के शुरुआत करे है। आंगनबाड़ी विशेष रूप से गरीब वर्ग के बच्चा गर्भवती माता शिशुवती माता किशोरी बालिका एमन सब पर काम करत है उमन के विकास पर उमन के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते है जिसमें स्वास्थ्य विभाग हमर बहुत सहायता करे।
1: हाँ हाँ। तो देखिए बताया है कि भाई आंगनबाड़ी कर माध्यम से लड़का मन भी लाभान्वित होता है संगे संगे भाई कुपोषण ला दूर करे पर भी एक शुरुआत करल गैसा है। भाई सबे जात कर बात है कि भाई किशोरी मन बर हो चाहे वो नान लड़का मन बर हो चाहे हमार बहनी मन बर हो सबे जन भाई आही तो यहाँ योजना के लाभ उठाही। तो देखिए और जानना चाहब कि हमार जो आंगनबाड़ी है उमें का सुविधा भेटायल।
2: आंगनबाड़ी में गर्भवती माता और बच्चा मन के गरम भोजन हमन देती रोज दिन देती खाए बर आती और ओमन के वजन भी करती और ओमन के टीकाकरण के भी कार्यक्रम हमन के आंगनबाड़ी में चले नर्स दीदी आयल ओमन के समय समय पर टीकाकरण भी होल और गर्भवती माता मन के भी टीकाकरण होल।
1: जैसे देखिए बता थी कि भाई ओमन ला गरम भोजन देहल जाए तो ओमें का चीज के तिहा करती कि भाई उमन के खाना में का चीज़ शामिल होना चाहिए।
2: आंगनबाड़ी में हमन तो अभी बच्चा मन

0: के और महिला मन के चावल दाल दाल में भी कई प्रकार के दाल रहेल, मिक्स दाल रहेल, मूंग दाल रहेल, रहर दाल रहेल, चना दाल भी रहेल। सब्जी में सोयाबीन बड़ी जरूरी है, चना जरूरी है, मटर जरूरी है। भाजी में सब प्रकार के भाजी, लाल भाजी, मुनगा भाजी, पालक भाजी और तुहर चना भाजी, सब प्रकार के भाजी हो गए, टमाटर हो गए, वो सब ला खिलाती हमन आंगनबाड़ी में।
1: देखिए पौष्टिकता पूरा मिला के और खाना में देहत है नहीं तो भाई सब जन के जी हर बढ़िया खुश हो जात हो। एक तो गर्मे गर्म खाता है और ऊपर ले देखिए कि पौष्टिकता भी बढ़िया भेटाता है। अब बहुत जरूरी है कि भाई जो गर्भवती बहनी मन हमारा हैं तो उमन के गर्भ में जो लड़का पलता है तो ओला पौष्टिकता भेटा है, संगे संगे जो नान लड़का मना है तो उमन ला भी पूरा खाना में पौष्टिकता भेटा है और उमन कर शारीरिक विकास जो है वो बढ़िया हुए। तो एकर अलावा भी कुछ और ऐसा योजना चलता है का कि जेकर माध्यम से सब जन लाभ पाता है?
0: हाँ चलत है ना, जैसे सरकार चलाई से अभी आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट दिहल जाए, जेकर में 0 से 3 साल तक के बच्चा मन के भी रेडी टू ईट है, 750 ग्राम के देती। गर्भवती माता मन के भी देती रेडी टू ईट, वो मन के मात्रा थोड़ा ज़्यादा है, 900 ग्राम है। और शिशुवती माता मन के भी देती, ओह मन के मात्रा 900 ग्राम है। गंभीर कुपोषित बच्चा मन के भी देना है, ओह मन के देती। और 3 से 6 साल के बच्चा मन के भी रेडी टू ईट के हमन पैकेट देती। और साथ में जो टीकाकरण होएल ओकर में नर्स बहन द्वारा आयरन की गोली, विटामिन ए के सीरप और ये सब, और कैल्शियम कृमिनाशक दवाई,
1: ये सब चीज़ देखिए आंगनबाड़ी में भेटाता है नहीं
0: है। हाँ।
1: और जैसे अब बहुत सारा चीज़ ऐसे हो सा है कि चाहे तो हमन कुपोषण देख ली, चाहे जैसे कृमि नाशक बताया था तो वो भी दवा देह से देखी कृमि के बहुत कमी हो गई सा है और लड़का मन स्वस्थ होता है। तो टीकाकरण जैसे करवाना है तो टीकाकरण के बारे में का सब टीका जो है यहीं लगती या ओकर अलावा टीकाकरण जैसे हमरे भाई अस्पताल में जाती तो वहाँ ले हमन ला कार्ड भेटा थे तो वहाँ होएल या आंगनबाड़ी में भी होएल?
0: अस्पताल में भी होएल और वही टीका हमार आंगनबाड़ी में भी होएल। बच्चा जब जन्म लेहल तो वो अस्पताल में तो के जन्म से के बाद वाला टीका लग जाए और ओकर बाद 1 महीना के हो जाए बच्चा तो पेंटावेलिन पहला टीका लगेल, वो टीका हमार आंगनबाड़ी में लग जाए। तेकर 1 महीना 1.5 महीना बाद दूसरा टीका लगेल, फिर 3.5 महीना में तीसरा टीका लगेल, वो टीका भी हमार आंगनबाड़ी में लगेल। 9 महीना में खसरा के टीका लगेल और साथ विटामिन ए के दवाई भी देती, वो टीका भी हमार आंगनबाड़ी में लगेल। ओकर बाद फिर 5 साल में भी टीका लगेल, वो टीका भी हमार आंगनबाड़ी में लगेल। मतलब जो सरकार टीका चलात है वो टीका हमार आंगनबाड़ी में लगेल, नर्स दीदी के द्वारा आंगनबाड़ी में टीका लगाल जाएल।
1: हाँ भाई जैसे कोनो कहीं कि भाई हमन अस्पताल के कार्ड लाने ही तो भाई वही अस्पताल में हमन ला नहीं जाना है, आंगनबाड़ी कर माध्यम से भी वो काम हो सकत है नहीं?
0: हाँ हाँ हो सकत है, आंगनबाड़ी के माध्यम से भी वो काम हो जाएल।
1: तो इसमें अब ऐसा कोनो बात नहीं है कि भाई हमार कोनो परेशानी होता है तो हमन जा नहीं सकत है तो कहाँ जाइए और कैसे करवाई? कावर की देखी कोनो कोनो टीका मन ऐसे होते हैं कि भाई हमन ला लगवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और अगर ओला हमन नहीं लगवा तो बहुत सारा बीमारी भी हो जाते। एकर अलावा देखी सुपोषण चौपाल योजना है एहूला सुने ही तो ये योजना हर का हवे?
0: सुपोषण चौपाल योजना सरकार द्वारा बहुत अच्छा योजना चलाए है। एकर में का है ना, हमन गर्भवती माता मन के आंगनबाड़ी में गोद भराई करती। ओकर में का होल कोई कोई परिवार ऐसा रहेल ना गर्भवती मन के ज़्यादा ध्यान नहीं दहेल, हमन क्या करती ओमन ला आंगनबाड़ी में बुलाती और बुला करके मस्त ओमन के टीका उका लगा के आओ आस पास के मोहल्ला मन के औरत मन ला बुला के आदमी मन के बुला के और गर्भवती माता के

0: कि सब कोई अपन अपन आसपास के आंगनबाड़ी केंद्र में जावा, जो भी गर्भवती माता है वो मन जाके अपन वहाँ पंजीयन करावा, आंगनबाड़ी के पूरा लाभ उठावा वहाँ से, बच्चा मन के भी वजन करावा, टीकाकरण करावा वहाँ पे जा कर के। सरकार द्वारा बहुत सारा योजना हमन के विभाग चला थे, जननी सुरक्षा योजना है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, सुपोषण चौपाल योजना है, नोनी सुरक्षा योजना है, जेकर में गरीब परिवार के बच्चा मन के बीमा कराल जाए, ये सब योजना के पूरा लाभ उठावा।
1: तो देखिए आज बहुत ही बढ़िया जानकारी दे है, पूरा विस्तार से जानकारी दे है, कितना सारा योजना कर बारे में आज हमर बहनी मन जाने हो ही और आंगनबाड़ी में आही और लाभ उठाही, इतना बढ़िया गुड बात पर राउर ढेर धन्यवाद।
2: हाँ तो देखिए शशि श्रीवास्तव बहन जगरमा दीदी कर बातचीत होइस और भाई बताइन कि आंगनबाड़ी से हमला का का लाभ मिलता है और एक लाभ कैसे लेना चाहिए, तो बहनी मन हमार जरूर सुनिन हुई और भाई उमन भी लाभ लही। अब देखिए एक ठन गीत है भोजपुरी गीत, तो लेगी चली पहले आप मनला गीतला सुनवा।

0: हाँ तो देखिए भोजपुरी गीत सुनें, बड़ा सुगर अकन गीत रहीस, हीरा चंद पटेल कर गाल रहीस। बनी हो बेरा हर थोड़कुन बची सा है, और जात जात में यही कहना चाहूँ कि भाई देखी बात करत कर तो समय कर पता नहीं चले, बहुत सारा वा गोट रहे लगे कि जे घनी बैठन उघनी आप मन से रिकिम रिकिम की गोट लग करी, लेकिन समय कर भी भाई पाबंदी है। और साथे साथ गोटाऊ करना चाहूँ मैं कि हमार जितना भी कार्यक्रम रहे ओकर प्रतिक्रिया आप मन जरूर लिख के भेजिया। संगे संगे कई बार कहे हों कि भाई आप मन जो अगर कोई अच्छा जानकारी रहे तो जरूर लिख के भेजिया, हमन अपन कार्यक्रम में ओला भी शामिल जरूर कर। जब चिट्ठी पत्री भेजता ते घनी वो अपन वो जानकारी जो रहे अपन गाँव कर अपन जो जगह है चाहे कोई आस पास कर ओला जरूर के भेजिया। तो भाई अब अपन अब ये बेरा समेटे कर हमारे बेरा होएगी सह कि अब अपन ताम झामला समेटो मैं, और फिर यही वादा के साथ कि आने दिन फिर बेटा हूँ। किस्मतिया बहन ला दी विदा, राम राम।
1: आप सुन रहे थे बहनों के लिए कार्यक्रम घर गोसाइन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं, आपकी रेडियो साथी मैं पूनम उपाध्याय। इस खूबसूरत से सफर में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत पत्थर फिल्म से आशा भोसले पंकज उदास की आवाजों में। रचना कुलवंत जानी की है, संगीत राम लक्ष्मण का है, और इस गीत को पसंद किया है सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे, ग्राम सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, एकता कॉलोनी रोहतक से सीता राम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, अकलतरा से दिलीप चंदन, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, चरोदाबार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत पत्थर फिल्म से।

पत्थर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब सुनते हैं घर फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को पसंद किया है

रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डडवानी और पूरा माखीजा परिवार। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोहित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी। नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, सोपान ताड़े, नारायण इंगले, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी पीहू, त्रैंबिका लीना, आशुतोष अंगारे। गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण भाम्बिस्टे, अनीता भाम्बिस्टे और राहुल भाम्बिस्टे। मामूल वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, तुषार और पीएस नुहानकर। ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुरारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं ये गीत घर फिल्म से।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे घर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब सुनते हैं सलमा आगा का गाया ये गीत फिल्म निकाह से। हसन कमल की रचना है, संगीत रवि का है और सुनना चाहा है इस गीत को रायगढ़ से नरेंद्र तिवारी। बेबी जोई पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखन लाल देवांगन। दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नुखेलाल वर्मा। इंदिरा चौक तखतपुर से मिशीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस रेहान। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। गांव हीरा वाली फजल का पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, बाबू भाई। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। प्रेम गीत फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ चोड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अल अशफाक, आफरीन कौशर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटनी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी पूरा अब्बासी परिवार। तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और पूरा परिवार। ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े, मंजू राजवाड़े। गुजरात से रश्मि झरना, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास, दिवांगन रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूरसाय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं मौसम फिल्म से गीत, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाज़ों में। गुलजार की रचना, संगीत मदन मोहन का है और इस गीत को पसंद किया है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम सिंह, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना, हीरामणि और प्रणय प्रसिद्धि, छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर कुमार गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर कुमार गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: इसी गीत के साथ ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है।

0: सचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय

0: मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल गुलाम अली की आवाज़ में।

0: टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के,

इसी गीत के साथ गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, सभा समापन से पहले आइए हम आपको हमारे शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनिएगा निषाद खान का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण। शाम 5 बजे का वक्त रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का, कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे। भजन संध्या कार्यक्रम में शाम 5:05 पर 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:20 पर कुछ लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे गोधूली कार्यक्रम में। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण लेकर आएंगे 7:20 पर, जिसमें होगी चर्चा परंपरागत कृषि विकास योजना पर। साथी होगी चर्चा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। आजकल क्रम में सुनेंगे उन्नत अरहर उत्पादन तकनीक व लाभ विषय पर जानकारी। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कुछ फिल्मी नगमे और पेश करेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में रात 9:15 पर। 9:30 पर ईमेल की गूंज कार्यक्रम में और मनभावन कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:30 पर। ये तो थे हमारे शाम के सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय दिन के 3:02 हुए हैं। अब श्रोताओं को हम बता दें कि मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर शाम 5 बजे हम अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आरंभ होने का। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखाण, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 101 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछाप, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है

भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनूप जलोटा और संजय राज का गाया ये भजन, शब्द रचना नलिनी वर्मा की है।

0: परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जूली का ये भजन। आवाज है आशा भोसले और उषा मंगेशकर की।

कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ करोड़ों पर।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन, स्वर है मृत्युंजय का।

भजन संध्या कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हेमलता, महेंद्र कपूर, शब्बीर कुमार और सुरेश वाडकर का गाया फिल्म मरते दम तक का ये भजन।

महेंद्र कपूर, शब्बीर कुमार, सुरेश वाडकर और हेमलता के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी।

खुद को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। स्वागत है आप सभी का युववाणी के हमारे आज के संक में। आज दिन है सोमवार और आज की युववाणी के कार्यक्रमों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त शोभा मनवानी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस तेज़ दुनिया में हम सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भागती ज़िंदगी में हम उन लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। आज की युवा पीढ़ी अपने सपनों को के पीछे भाग रही है। करियर, सोशल मीडिया, दोस्त, सफलता, ये सब ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना, क्योंकि उनकी दुआओं से बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बुज़ुर्ग सिर्फ उम्र में बड़े लोग नहीं होते, वे अनुभवों की चलती फिरती किताब होते हैं। उन्होंने वो समय देखा है जहाँ रिश्ते दिल से निभाए जाते थे, ऑनलाइन नहीं, जहाँ खाना साथ बैठकर खाया जाता था और जहाँ कैसे हो सिर्फ एक मैसेज नहीं सच्ची चिंता होती थी। आज टेक्नोलॉजी ने हमें स्मार्ट बनाया है, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग हमें इंसान बनना सिखाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे उन्हें क्या समझ आएगी आज की दुनिया, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी को सबसे गहराई से वही समझते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष देखा हो। आज बहुत से बुज़ुर्ग अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उनके बच्चे दूर शहरों में हैं या फिर एक ही घर में रहते हुए भी उनसे दूर हो चुके हैं। कभी कभी उन्हें दवा के साथ दो पल की बातचीत चाहिए होती है, कोई ऐसा चाहिए जो पूछे दादी आज आपकी तबीयत कैसी है, दादाजी आपकी पुरानी कहानी सुनाइए ना। यकीन मानिए उनके चेहरे की मुस्कान किसी अवार्ड से कम नहीं होती। हम युवा अक्सर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम छोटे थे तब हमारे माता पिता और दादा दादी ने हमारी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा, रातों की नींद छोड़ी, अपनी इच्छाएं छोड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके। सम्मान सिर्फ बड़े शब्दों से नहीं होता, सम्मान छोटे छोटे व्यवहारों में दिखता है। और जिस घर में बुज़ुर्गों का सम्मान होता है वहाँ बरकत भी रहती है और सुकून भी। इन्हीं विचारों के साथ पेश है ये गीत फिल्म एक विलन रिटर्न से, अंकित तिवारी की आवाज़ में, लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत है अंकित तिवारी का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस प्यारे से गीत के बाद चलते हैं क्रम इंद्रधनुष में।

स्वागत है आप सभी का इंद्रधनुष कड़ी क्रमांक 76 में। आज की इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में हो रहा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में हो रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में किस स्तर की सरकार कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में किस स्तर की सरकार कहा जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, अकबरनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, अकबरनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। पांचवे प्रश्न के रूप में सुनिए इस गीत के कुछ बोल, जिसमें आपको बताना है इस गीत के गीतकार का नाम।

दोस्तों, अब मैं आप सभी को पिछली कड़ी में पूछे गए प्रश्न और उसके सही जवाब बता देती हूँ। पिछली कड़ी का हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, जिसका सही जवाब है भारत। हमारा दूसरा प्रश्न था, 2026 वर्ल्ड कप में कुल कितने मेजबान देश हैं, जिसका सही जवाब है 3। हमारा तीसरा प्रश्न था, महाभारत में युधिष्ठिर को किस नाम से जाना जाता था, जिसका सही जवाब है धर्मराज। हमारा चौथा प्रश्न था, संस्कृत का महाकवि किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब है कालिदास। पांचवें प्रश्न के रूप में सुनिए इस गीत के कुछ अंश, जिसमें आपको बताना था इस गीत के गीतकार का नाम, जिसका सही जवाब है कौशल मुनीर और गीत है

दोस्तों अब मैं आप सभी को सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम बता देती हूँ। सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं अंडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश, दीपेश वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदुलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार और कुमारी क्रिस्टी पटवा, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा एवं वाना सिंगरौल, इंदिरा कला तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, पीपरपारा से कमलकांत गुप्ता, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन और सुमांशु पांडे, महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज।

और आयुषी गुप्ता, नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबका लीना और आशुतोष अंगारे, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना और विपुल कांबड़े, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी जोगेशपुरी, डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र यश और प्रयाण वर्मा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा, सावतपुर से ऋषि सेन और रितेश सेन, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और विभूति साहू, महाराष्ट्र से गजानन येले और नवदीप येले, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचिनी मसिया, तुषारिणी और खुमेंद्र मसिया। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी भी हमारे पूछे गए प्रश्नों के जवाब हमें लिखकर भेज सकते हैं। उत्तर भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी है indradhanushair@gmail.com, indradhanushair@gmail.com। इसी के साथ हमारा आज का ये क्रम इंद्रधनुष बस यहीं तक।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेश है फिल्म जब वी मेट से ये प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद पेश है ये अगला गीत फिल्म द डर्टी पिक्चर से, कमाल खान की आवाज़ में। लिखा है रजत अरोरा ने और संगीत है विशाल शेखर का।

दोस्तों, इस गीत के बाद पेश है ये अगला गीत फिल्म लापता लेडी से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, लिखा है प्रशांत पांडे ने और संगीत है राम संपत का।

वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे आप सभी से शाम 5:30 पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आज की युववाणी से। अपनी दोस्त शोभा मनवानी को नमस्कार।

0: श्रोताओं के लिए अभी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं समाचार। अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों

0: देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 6:05 हुए। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है आत्मविकास।
4: आत्मविकास शब्द दो शब्दों आत्मा और विकास के मेल से बना है। आत्मा व्यक्ति की चेतना, उसका मूल स्वरूप है और विकास का अर्थ है वृद्धि, प्रगति या पूर्णता की ओर अग्रसर होना। इस प्रकार आत्मविकास का अर्थ है व्यक्ति का अपने भीतर निहित संभावनाओं को पहचान कर उन्हें पूर्णता तक ले जाना या केवल बाह्य

उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति, आत्म जागरूकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने की प्रक्रिया है। भारतीय दर्शन में आत्मविकास को जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। साहित्य में चाहे वह प्राचीन ग्रंथ हो या कबीर, तुलसी और आधुनिक लेखकों की रचनाएं, आत्मविकास की यात्रा को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान में आत्मविकास को स्वयं की पूर्णता के रूप में परिभाषित किया गया है। अद्वैत वेदांत में आत्मविकास को आत्मबोध की प्राप्ति के रूप में देखा गया है। आदिशंकराचार्य ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में आत्मविकास को नित्य अनित्य विवेक के माध्यम से अज्ञानता के आवरण को हटाने की प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार आत्मा शुद्ध चेतना है जो देह, मन और बुद्धि से परे है। आत्मविकास का लक्ष्य है इस शुद्ध चेतना को पहचानना और माया के बंधनों से मुक्त होना। भागवत गीता आत्मविकास का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की नित्यता और देह की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं। गीता में आत्मविकास के लिए 3 प्रमुख मार्गों, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति

0: देह मन और बुद्धि से परे है। आत्मविकास का लक्ष्य है इस शुद्ध चेतना को पहचानना और माया के बंधनों से मुक्त होना। भागवत गीता आत्मविकास का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की नित्यता और देह की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं। गीता में आत्मविकास के लिए 3 प्रमुख मार्गों कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन है। कर्मयोग व्यक्ति को निष्काम कर्म के माध्यम से आत्मविकास की ओर ले जाता है। ज्ञान योग विवेक और आत्म जागरूकता के द्वारा और भक्ति प्रेम और समर्पण के माध्यम से। भारतीय साहित्य आत्मविकास की खोज का एक समृद्ध स्रोत रहा है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में आत्मविकास को भक्ति और प्रेम के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कबीर के दोहे आत्मविकास की सरल और गहन अभिव्यक्ति हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। यहाँ कबीर आत्मविकास को मन की शुद्धता और ईश्वर के साथ एकता के रूप में देखते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य में आत्मविकास को व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं और गीतांजलि आत्मविकास को मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य के रूप में देखती हैं। आत्मविकास का प्रथम चरण है आत्म जागरूकता। यह व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आत्म जागरूकता व्यक्ति को अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। आत्मविकास के लिए स्पष्ट और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। ये लक्ष्य व्यक्ति के मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। आत्मविकास के लिए साधना और अनुशासन अपरिहार्य है। ध्यान योग और आत्मनिरीक्षण जैसे अभ्यास व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाते हैं। अनुशासन व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविकास में शिक्षा और कौशल विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यक्ति को नई जानकारी प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर प्रदान करता है। आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। दूसरों की सहायता करने से व्यक्ति अपने अहंकार को कम करता है और आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी ने सेवा को आत्मविकास का आधार माना और इसे अपने जीवन में अपनाया। आत्मविकास केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, इसका सामाजिक आयाम भी है। एक आत्मविकसित व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और दूसरों को प्रेरित करता है। आत्मविकास व्यक्ति को यह समझ देता है कि सभी मनुष्य एक ही चेतना के अंश हैं। यह समझ सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और समरसता को बढ़ावा देने में सहायक होती है। आत्मविकास मानव जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है जो व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय दर्शन और साहित्य में आत्मविकास को जीवन का परम उद्देश्य माना गया है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान ने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। आत्मविकास की यह यात्रा आत्म जागरूकता से प्रारंभ होती है और साधना, अनुशासन और सेवा के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ती है। आज के युग में जब व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकवादी जीवन शैली से जूझ रहा है, आत्मविकास की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह व्यक्ति को आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। आत्मविकास का यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाने का एकमात्र रास्ता है।
1: आत्मविकास इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है, समाचार आकाशवाणी रायपुर से।
2: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू, 17 जुलाई तक चलैया सत्र में 5 बैठका होही। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलही। 27 जून तक मनाया जाही साला प्रवेश उत्सव। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू होही। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा हा ए बारे में अधिसूचना जारी कर दे है। 17 जुलाई तक चलैया ए सत्र में कुल 5 बैठका होही। सत्र के दौरान वित्तीय कामकाज के संगे संग आने सरकारी काम पूरा करे जाही। भारत हा पश्चिम एशिया में चलत संघर्ष ला खत्म करे बर अमेरिका और ईरान के बीच होए समझौता के स्वागत करे है। ये संघर्ष ले विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट खड़े हो गए रहिस। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री हा कहिन कि ये समझौता ले क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिन है कि देश के मध्यम वर्ग हा राष्ट्र निर्माण में बड़का योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री हा कहिन कि पाछू एक दशक में सरकार हा आम लोगन मन के जिंदगी ला सुधारे बर बढ़िया बुनियादी ढांचा कम खर्चा में स्वास्थ्य सेवा, बने ढंग ले पढ़ाई लिखाई,

0: साफ सफाई वाले शहर के संगे संग सार्वजनिक सेवा मन ऊपर ध्यान दे हवे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ह घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 30 पैसा प्रति यूनिट ले 50 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करे है। ऐसने बिजली दर में 6.23% की बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें घरेलू गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि पंप मन में बिजली के भाव में प्रति यूनिट 40 पैसा के बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन ल ऊर्जा प्रभार में दे जाए छूट ल 30% ले बढ़ा के 40% कर दे गए है। बिजली के बाढ़े दर अवैया 1 जुलाई ले प्रभावी होगी। गर्मी के छुट्टी के बाद काली ले प्रदेश के जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद खुल जही। ये दौरान हुआ यह कार्यक्रम में शाला प्रवेश उत्सव पर स्कूल प्रबंधन ह पूरा तैयारी कर ली है। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल अवैया नवा लड़का मल्ला तिलक लगा के स्वागत करे जाही और संगे संग छात्र मल्ला पुस्तक ड्रेस और साइकिल दे जाही। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग ह प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राज्य गीत के संगे संग आने आने गतिविधि ल जरूरी रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे है। मुख्यमंत्री ह प्रदेश के जम्मू जनप्रतिनिधि मन ल चिट्ठी लिख के 16 ले 27 जून तक होइया शाला प्रवेश उत्सव में अपन भागीदारी दे के आह्वान करे है। मुख्यमंत्री ह कहिन है कि शिक्षा ह कोनो भी समाज और राष्ट्र के विकास के आधार हरे। उमन मंत्री सांसद विधायक जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष महापौर के संगे संग नगरी निकाय मन के जनप्रतिनिधि मन ले विनती करें कि अपन क्षेत्र के स्कूल में जाके ये अभियान में सहभागी बने। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गर्मी के छुट्टी खत्म होने के बाद आज ले खंडपीठ और एकलपीठ मन में सुनवाई एक घाव फिर शुरू हो गई। आज ले वकील मन ह अदालत कक्ष में आके अपन पक्ष रखिन। जानबा के मुताबिक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी 18 मई ले शुरू हो रही। ए दौरान सिर्फ जरूरी मामला मन के सुनवाई पर हरेक हफ्ता विशेष अवकाशकालीन पीठ बनाई गई रही। अवैया मानसून ल देखत आज ले छत्तीसगढ़ के जम्मो टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मन ल पर्यटक मन पर बंद कर दे गए है। ये जम्मो संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रही। वन विभाग के मुताबिक पर्यटक मन पर अब जंगल के दरवाजा 2 अक्टूबर ले खोले जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ह मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला पर दोबारा होवत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दे है। एला NTA के वेबसाइट neet.nta.nic.in ले डाउनलोड करे जा सकते। परीक्षा 21 जून के मझनिया 2 बजे ले शुरू होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार खोती। पशुपालन ल बढ़ावा दे बर राज्य सरकार ह बस्तर के हर परिवार ल दू दू ठिन गाय या भैंस दीही। ए घोषणा काले रायपुर में होए एक ठिन पुस्तक के विमोचन समारोह के मौका में मुख्यमंत्री ह कहिन। उमन कहिन कि नक्सलवाद के सेती बस्तर के लोगन मन ह विकास ले दूरिया रहीस। एखरे सेती अब तेजी ले विकास कम करे जाही। एखर बर रोड मैप तैयार कर ले गए हे। मुख्यमंत्री ह बताइन कि गांव गांव में राशन दुकान खोले जात हे और सुरक्षा शिविर मन ला सेवा डेरा के रूप में विकसित करे जात हे। कार्यक्रम के ए मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो शामिल होइन। दुर्ग जिला के पुलिस लाइन सभागार में हो एक ठिन कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति कोटी ले शौर्य चक्र ले सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नागरिक अभिनंदन करेगी। ये मौका में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है कहिन कि ये दोनों अधिकारी मन कठिन स्थिति में साहस धैर्य के परिचय देके छत्तीसगढ़ पुलिस के गौरव बढ़ा है। उमन बताइन कि शौर्य चक्र शांतिकाल में दे जाए देश के तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ए बेरा कांकेर जिला के पखांजूर थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट ह 40 ठिन सफल नक्सल मुठभेड़ मन में शामिल रहीन। तो उन्हें भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख 25 ठिन नक्सल विरोधी अभियान में अपन भूमिका निभाइन। आयुष मंत्रालय ह आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के होवैया कार्यक्रम पर औपचारिक कार्यक्रम मन के

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ सादरी लोकगीत। पहले सुनिए सेतपाल इक्का और साथियों का गाया ये डोमकच गीत।

जोहन लकड़ा और साथियों के गाए इस अधरतिया कर्मा गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एयरलिफ्ट का नगमा। गीत लिखा है कुमार ने और संगीत तैयार किया है अंकित तिवारी ने।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत तैयार किया है शंकर महादेवन ने, आवाज़ शंकर महादेवन की ही है और फिल्म का नाम है दिल चाहता है।

रहता है। श्रोताओ, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए इरशाद कामिल का लिखा गीत विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। आवाज़ है अतीफ असलम की और फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है।

0: आतिफ असलम के गाए फिल्म टाइगर जिंदा है के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
7: रुक जा बुद्धू।
8: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
6: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
9: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
10: कूल रहो।
11: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
12: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी

0: ही मारता हूँ। 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों, बस्तर और सरगुजा सहित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावा पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10% की छूट को जारी रखा गया है। देरी से किए जाने वाले भुगतान पर लिए जाने वाले अधिभार को अब प्रति माह के बजाय प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। वहीं अग्रिम भुगतान किए जाने पर दी जाने वाली 0.25% की छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर तथा सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर

0: पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेश उत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकल पीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ताओं ने अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में राज्य सरकार कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देगी। कल रायपुर में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर के हर जनजाति परिवार को 2-2 गाय या भैंस दी जाएंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया, अब बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सलियों ने अपने जिन कैडर की नसबंदी कर दी थी उनकी नसबंदी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन मामलों में यह संभव नहीं हो पाएगा ऐसे दंपत्ति को टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा, पुस्तक 13 राज नहीं आएगा रे के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू ने भी संबोधित किया। मॉनसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जिन संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा उनमें अचानकमार, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, बारनवापारा अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। वन विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर से इन सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत आज से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के संवेदनशील गांवों में भी यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य के 36 विकासखंडों के 697 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 2476 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग 16,20,000 लोगों की मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्य प्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800

0: खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं उत्तर छत्तीसगढ़ होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आगामी 3 दिन तक लगभग 1 से लेके 2 डिग्री का वृद्धि होने की संभावना है। मानसून का प्रो आगामी 4 से लेके 5 दिन का अंदर छत्तीसगढ़ में एंट्री होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक समारोह में आज राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का नागरिक अभिनंदन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दुर्ग जिले के अग्रसेन चौक और उसके आसपास की सड़क में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेले खोमचों को प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले की दशरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने विद्युत सामग्री के गबन और चोरी के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है। और कोंडागांव जिले में पटवारी भर्ती में चयन कराने का झांसा देकर एक युवक से करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: बंधू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बंधू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
6: कूल रहो।
7: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है श्रोताओं आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने का। पहले जानिए हमारी इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। चौपाल कार्यक्रम में शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं को परंपरागत कृषि विकास योजना और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही होगा क्रम आजकल और इस क्रम में उन्नत अरहर उत्पादन तकनीक और उसके लाभ के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी जाएगी। रात 8 बजे हम आपके लिए पेश करेंगे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर और आपके ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपके लिए पेश करेंगे 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यावनी होगा 10:00 और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे निषाद खां का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण। फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम मनभावन लेकर हम आपके लिए आएंगे 10:30 पर। ये तो थे हमारे इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम।

और आइए हम आपको बता दें अपने कल के कुछ एक कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु। रामचरित मानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे 6:35 पर। खेती की बात में ग्रामीण किसानों को कुछ सामयिक सुझाव दिए जाएंगे, समय होगा सुबह 6:45। गुंजे जंगल कार्यक्रम में सुबह 7 और गोधूली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया लोकगीत। सुगम संगीत का एक कार्यक्रम होगा सुबह 7:15 पर। नमस्कार सरगुजा, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइयां आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन होगा सुबह 9:00। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे, समय होगा सुबह 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आपके लिए पेश करेंगे सुबह 11:05 पर। प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 12:00। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चैन लेकर हम आपके लिए हाजिर होंगे दोपहर 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:10 पर, जिसमें बहनें सुनेंगी क्रम आईना। ईमेल की गूंज कार्यक्रम होगा दोपहर 1:40 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंदा होगा दिन में 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी होगा शाम 6:30 पर। चौपाल कार्यक्रम में कल होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप भाग लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश लेकर एक बार फिर आपके सामने आपके समक्ष हाजिर होंगे रात 8:00। चित्रपट संगीत 9:15 पर। मनी टॉक और मंथन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर और इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ एक कार्यक्रम।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं और इस वक्त शाम के 7:05 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिताली सिंह की गई ये गज़ल। शायर हैं रवि पवार। सब कुछ पाकर थोड़ा सा कुछ कम भी रहता है, इन खुशियों में एक तुम्हारा गम भी रहता है।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: लीजिए पेश है जमीर काजमी का कलाम, कविता पौड़वाल और जसवंत सिंह की आवाज में। एक समंदर है जो काबू में नहीं आता, एक कतरा है जो मुझसे

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

पंकज उदास की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

जम्मो सुनोया भैया बहिनी बनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। ये कार्यक्रम है चौपाल। और देखा अभी गर्मी का समय चलता है, हमन के तीहा रखना पड़ेल। मजनिया में बहुत गर्मी पड़ेल और पानी कर कमी भी शरीर में हमनला समझ में आयल। तो पानी भी समय समय पर हमन के पीना है, अपन स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना है। कभी कभी गर्मी लगेल और हमनला ध्यान नहीं रहेल अपन काम में, बूता में, खेती बाड़ी कर काम भी अब शुरू हो गई से। तो पानी कर कमी जिन रहे, खेत कति जात हन तो वहाँ भी पिए कर पानी कर व्यवस्था हमारे पास सुविधा रहे, और शरीर में पानी कर कमी रही तो कई प्रकार कर समस्या हमला देखे बर मिलेल। और खासकर बुजुर्ग मन भी और लड़का बच्चा मन है ओमन भी, तो ओमन कर हमन के ध्यान रखना चाहिए। एक बात कहत रहन कि आज का दिन ला देखा हमन मनाथन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हमारे घर में भी सियान मन रथे, कोनो कर उम्र ज़्यादा हो गई से, कोनो कर उम्र कम है, धीरे धीरे उमन बुढ़ाते हैं। तो हमन देखथन कि कई जगह उमन के साथ दुर्व्यवहार होएल, और दुर्व्यवहार कई कस हमन देखथन।

कभी कभी ओमन के पास अपन खर्चा पर पैसा भी नहीं रहेल और हमन ला ध्यान में नहीं रहेल कि ओमन के पास कोई ज़रूरत हुई। हमन सोच लेथन कि अरे सियान हो गई से खाना पीना मिलत है का चीज़ की ज़रूरत हुई, लेकिन एक बात सोचा कि अगर ओमन के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा पोटराइन है अगर ओमन तो एक ठो हिम्मत बंधे रहे कि भाई इतना दिन में काम करें लड़का बच्चा मन ला इतना बढ़वा के कमाए लायक बनाए दे हैं तो हमारे पास थोड़ा मोड़ा पैसा रहतीस। कई बार मैं देखें कि पेंशन पर दुरिया दुरिया ओमन जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, वापस आते हैं तो बड़ा खुशी ओमन के चेहरा में दिखेल कि पेंशन भेटाई से कहीं अपन चीज ला मिठाई मन ला कहीं ज़रूरत की चीज़ ला ले लो। तो दुर्व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है, बुजुर्ग मन से बहुत सम्मान से हमन के बात करना चाहिए। बड़ा अनुभव मन के पास रहे लो मन ला देख देख के हमन ये देखथन कि जैसे जैसे वो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में दादी है बाबा मन है तो हमन ला भी याद रखना चाहिए कि एक दिन हमन भी वही कस स्थिति में पहुंच जाबो तो हमारे साथ अगर दुर्व्यवहार हुई तो अच्छा नहीं लगी हमन ला। तो ये दिवस के संबंध में हमन ला जागरूक रहना चाहिए। हर बछर के हमन 15 जून के विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाथन। एकर उद्देश्य बुजुर्ग मन के प्रति और ओमन के बर होए वाला शारीरिक मानसिक आर्थिक और सामाजिक दुर्व्यवहार के प्रति लोग मन में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिवस कर शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू करल गए रहीस और बुजुर्ग मन के अधिकार और सम्मान बर ओमन कर रक्षा बर ये दिवस कर शुरुआत करल गए रहीस। जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग होल तो अगर हमन ओकर साथ अपमानजनक व्यवहार करत हन ओमन ला ध्यान नहीं देत हन उपेक्षा करत हन कि कहाँ बैठी से बैठे पर जगह है कि नहीं खाए पर मिली से कि नहीं मिली से आर्थिक रूप से शोषण करल जाए या फिर मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देहल जाए तो ये सब ला हमन कथन बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार। तो ये सब के प्रति हमन ला सचेत रहना चाहिए। हमर जो व्यवहार है वही ला देख देख के हमर जो लड़का बच्चा मन है सीखते हैं। तो जो हर एक समय उंगली पकड़ के हमर ला चले बर सिखाए रहीस आज अगर वाला सहारा कर जरूरत है तो हमर कर्तव्य है कि हमन उनकर सम्मान करी उनकर भावना मन ला समझी और अकेलापन महसूस ना होएक दे। काबर कि हमन कई बार सोचथन कि अरे बुजुर्ग सियान लेटी से है खाना भेटाई गई से सूतत है अपने उठ जाही तो कभी कभी ओमन अकेलापन महसूस करते हैं और ओमन ये सोचते हैं कि लड़का बच्चा मन अपन मस्ती में है हमर कति ध्यान नहीं देते हैं तो वो अकेला मनपन जो है धीरे धीरे बढ़ेल और वो मानसिक रोग का एक ठो कारण बन जाए। तो अगर परिवार ला मजबूत बनाना है तो बुजुर्ग मन सियान मन जो हैं ओमन कर भी मजबूत रहना जरूरी है। पूरा परिवार जब एक साथ रही सब ला बराबर कर सम्मान मिली तो परिवार कर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेल परिवार कर भरण पोषण भी अच्छा रहेल। तो हमन ला ये समझना जरूरी है जल्दी से मैं बोलता हूँ कि बुजुर्ग मन बोझ नहीं है ओमन अनुभव के अनमोल खजाना रथे ओमन ला देख देख के हमन के सीखना चाहिए। एक चीज़ जो हमन और सीखे हन खेती बाड़ी में देखा अभी समय के साथ जो रासायनिक खातु कर हमन दिन ब दिन प्रयोग बढ़ाएन और हमन ये सोचें कि एकर से उत्पादन बढ़ी कीटनाशक दवा कर भी हमन उपयोग करें तो सरकार कहत है कि अब धीरे धीरे संतुलन की स्थिति में आना पड़ी और अब हमन बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये विचार से कि परंपरागत जो कृषि विकास योजना है उकर संबंध में हमन के काम करना चाहिए। जैविक खेती की ओर बढ़ाए बर उकर बर जागरूकता बढ़ाए बर सरकार योजना चलात है जिला कथे परंपरागत कृषि विकास योजना और एकर उद्देश्य किसान मन ला जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवा पर निर्भरता कम करना है और ये योजना हम जानते हैं कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित होल। तो योजना का मुख्य उद्देश्य हम जो समझे हैं जैविक खेती ला बढ़ावा एकर से मिल ही मिट्टी कर जो उर्वरता शक्ति बढ़ी मिट्टी कर स्वास्थ्य में सुधार करना एकर मुख्य उद्देश्य है। खेती में जो लागत लगातार बढ़त है चाहे हम रासायनिक खाद कर प्रयोग करी चाहे रासायनिक कीटनाशक दवा कर उपयोग करी तो उकर से लागत बढ़ेल तो अगर हम जैविक खातु कर अगर उपयोग करब तो खेती कर लागत भी कम होगी किसान मल्ला एकर माध्यम से बहुत बढ़िया बाजार उपलब्ध कराए कर भी उद्देश्य जोड़ल गई से। एकर अलावा जो सबसे बढ़िया बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण पर और सुरक्षित खाद्य उत्पादन पर बढ़ावा मिली किसान मन एकर लाभ ले सकते हैं खेत कर जो लागत हमन बात करें उनमें कमी आ सकते हैं।

कीटनाशक दवा के बदले हमन गोबर खाद, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट कर उपयोग कर सकत हन। ओकर से उत्पादन लागत हमन के कम होती जाही। माटी कर गुणवत्ता में सुधार होही। लगातार जो हमन देखत हन कि रासायनिक खातु कर उपयोग से माटी कमजोर होयल, माटी कर पकड़ में कमी आयल। माटी में अगर जैविक पदार्थ कर मात्रा बढ़त है तो भूमि कर उत्पादकता लंबे समय तक टिके रहे। जैविक उत्पाद बनकर बढ़िया हमन के मूल्य भी मिले बाजार में बढ़िया। ओकर अगर लोग मन जान गिन कि हमर पास चाहे फलाना किसान हर जो अनाज उगात है, फल उगात है, सब्जी मन कर जो उत्पादन करत है वो जैविक पद्धति से है, तो ओकर रेट भी बढ़िया मिले और हमर बाजार बढ़िया बाकी लोग की तुलना में हमर बाजार बढ़िया से स्थापित हो जाए। एकर बर सरकारी सहायता भी हमन ला मिले। जैविक खेती अपनाए वाला किसान मन ला प्रशिक्षण मिले। जैविक इनपुट तैयार करे बर प्रमाण पत्र लेहे बर जिला कथे प्रमाणन और विपणन बर हमन ला वित्तीय सहायता मिले। एकर अलावा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जो लाभ हमन के मिले वो हमन ओकर बारे में बात करे हन। जो मुख्य रूप से हमन एमे देखथन कि किसान मन कर 50 एकड़ कर क्लस्टर बनाल जाते, ओकर समूह बनाल जाते और ओमे किसान मन ला जोड़ल जाते। तो ऐसे जो समूह बनेल समूह आधारित इला खेती कथन, समूह आधारित जैविक खेती ला बढ़ावा मिले। सरकार एमे बहुत मदद करेल। जैविक प्रमाणन कर सुविधा एमे बढ़ाल गई से और उत्पाद मन कर जो ब्रांडिंग है कैसे कैसे एकर कहाँ मिले हमन आज भी देखथन कि मोबाइल में अगर हमन देखब तो कहाँ कहाँ पर जैविक खेती से लोग मन बढ़िया उत्पादन करते हैं उकर बारे में बढ़िया जानकारी हमन के भेटायल। तो एकस आधार पर हमन के परंपरागत कृषि विकास योजना कर हमन के लाभ लेना चाहिए। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 बच्छर में हमन के सहायता मिलेल और एमे समझ जाओ 50,000 में जो 31,000 रुपये है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जैविक इनपुट पर मिलेल। माने जैविक इनपुट कहे कर मतलब है कि जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक और बीज पर मिलेल। यही में 8,800 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूल्य संवर्धन और विपणन पर मिलेल। 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्लस्टर निर्माण पर मिलेल, प्रशिक्षण पर मिलेल। तो एक एला बाटल गई से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो हमन के 50,000 रुपये मिलत है। योजना 2015-16 से संचालित है। रासायनिक मुक्त जैविक खेती ला बढ़ावा देहे बर योजना सरकार लागू करी से किसान कर समूह बनाल जाते जिला क्लस्टर कथे। जैविक प्रमाणन मदे एला कथे PGS इंडिया और विपणन सहायता भी एमे उपलब्ध कराल जाते। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कृषि विभाग से हमन संपर्क कर एकर बारे में पता कर सकत ही। कृषि विभाग कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकत ही। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी बता देते हैं। एकर अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जैसे अंबिकापुर में भी है, अलग अलग जगह कोरिया में भी है, बलरामपुर में भी है, वहाँ से हमन जानकारी ले सकते हैं। कुछ और बातचीत करब लेकिन मैं सोचते रहें कि एक बढ़िया कन गीत ना सुन लेते ओकर बाद में बातचीत करब।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40

0: वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश में लामन सुनत रहन, ओकर से पहले हमन एक बढ़िया कन गीत सुनन, गुलाब सिंह कर गाल गीत रहिस विनती करत हो मैया। उम्मीद करत हन कि ये गीत राउर मल्ला जरूर पसंद आइस होही। अब हमन बात करब कि अभी के समय में अरहर उत्पादन हमन कैसे कर सकत हन, ओकर उन्नत तकनीक कैसे, हमन के का चीज के ध्यान देना चाहिए। तो हमन जानत हन कि अरहर भारत कर प्रमुख दलहनी फसल है और ना केवल हमन के एकर से आय बढ़ल बल्कि भूमि कर उर्वरता सुधारने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएल। काबर कि अरहर कर जड़ में हमन जानथन कि राइजोबियम जीवाणु उपस्थित रहेल और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन रहेल ओकर स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल से लेकर के जमीन में मिला देते हैं। एकर से माटी कर उर्वरता भी बढ़ेल और हमन के ज़्यादा यूरिया भी नहीं देना पड़ेल। काबर कि ओकर से अगर हमन ज़्यादा यूरिया देबो तो यूरिया कर मात्रा, नाइट्रोजन कर मात्रा जमीन में ज़्यादा हो जाएगी और नाइट्रोजन अधिकता से कई ठो बीमारी फसल मन में होएल। एकर अलावा अगर हमन अरहर लगाथन तो आय वाला फसल में दूसर अगर हमन आगे फसल लगाथन तो में अतिरिक्त नाइट्रोजन के रूप में हमन के यूरिया में जो खर्चा होएल ओकर से बचत भी हो जाएल। कुछ उन्नत किस्म है जैसे जो बढ़िया उत्पादन देते हैं, शीघ्र पके वाला जो कुछ फसल है जैसे 140 से 170 दिन का है, ICPL 880/39 से जिला आशा कत हैं, ICPL 871/19 है, TJT 501 है, मध्यम अवधि कर भी कुछ हैं जो 170 से 220 दिन, TJT 401 है, पूसा है 992, MA 6 है। अधिक उत्पादन देने वाला कुछ संकर किस्म जैसे ICPH 2671 है, ICPH 2740 है। संकर किस्म में 25 से 40% तक अधिक उत्पादन देकर क्षमता हमन देखे हैं। जो अभी कर समय चलता है हमन देखब तो मानसून कर पहला जो बढ़िया बरखा हो जाए ओकर बाद हमन बुआई कर सकते हैं। सामान्य रूप से वैज्ञानिक मन कहते हैं कि 15 जून से 15 जुलाई का जो समय रहे उपयुक्त मानल जाए। देर से बुआई करने पर फूल और फली मनकर संख्या में बहुत कमी हमन देखते हैं। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज लगेल पर्याप्त रूप से रहेल शुद्ध फसल में अगर हमन अनुमानित आंकड़ा देखब। अंतर्वर्ती फसल में अगर हमन देखब तो 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त रहेल। बीज उपचार हमन के करना जरूरी है, फफूंदनाशी से बीज उपचार करना है, राइजोबियम कल्चर से करना है, PSB कल्चर माने फास्फेट घुलनशील जीवाणु के माध्यम से अगर हमन बीज उपचार करब, ये तीनों माध्यम से बीज उपचार करब तो जड़ मनकर बढ़िया विकास होल और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ेल। पोषण प्रबंधन हमन की जरूरी है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम हमन के देना चाहिए, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, सल्फर 20 किलोग्राम। सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमन के देना चाहिए जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बोरान की कमी वाले क्षेत्र में बोरान कर उपयोग करना चाहिए, एकर से फूल गिरे कर समस्या में कमी आएल। जल प्रबंधन जरूरी है, जैसे फूल आए के समय हमन की सिंचाई करना चाहिए, फली बने कर अवस्था में हमन की सिंचाई करना चाहिए। एक एक सिंचाई देहे से उपज में 20 से 30% तक वृद्धि हमन देखथन। जो हमन देखथन कि आधुनिक तकनीक जो एमे हमन उपयोग कर सकते हन, द्रोण आधारित छिड़काव हमन के कीटनाशक मन के और सूक्ष्म पोषक तत्व के समान वितरण एकर से हमन के मिलेल। मृदा परीक्षण हमन के सही समय पर करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना खाद देकर सिद्धांत में काम करेल। अंतर्वर्ती खेती हमन कर सकते हन, अरहर के साथ सोयाबीन अरहर हमन कर सकते हन, मूंगफली अरहर कर सकते हन, उड़द के साथ भी लगा सकते हन, एकर से जोखिम भी कम होएल और आय अधिक होएल। एकर अलावा हमन के अनियमित रूप से अगर बरखा होत है तो स्मार्ट कृषि पद्धति के नियम के अनुसार हमन के ऊंचा क्यारी बनाना चाहिए और ओमे बुआई करे से हमन के बढ़िया लाभ मिलेल। पारंपरिक खेती में 8 से 12 क्विंटल हमन के उत्पादन मिलेल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उन्नत तकनीक अगर हमन अपनाबो, ज़्यादा ध्यान देबो तो 18 से 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमन एमे देखे हन कि उत्पादन हमन के मिलेल। तो अरहर के हमारे क्षेत्र में बढ़िया उत्पादन करते हैं, बढ़िया समय है। सरकार भी कहते हैं कि दलहन तिलहन उत्पादन में किसान आत्मनिर्भर बने।

जरूरी है ताकि बाहर से हमन के विदेश से दलहन और तिलहन ना मंगाना पड़े, तेल ना मंगाना पड़े और हमारे देश का पैसा हमारे देश में बचे रहे। कतार और पौधा कर दूरी कर अगर हमन देखब तो शीघ्र जो पके वाला जल्दी पके वाला जो फसल किस्म है वो में कतार से कतार कर दूरी हमन के 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए। पौधा से पौधा के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर हमन के रखे चाहिए। मध्यम और देर से पके वाला किस्म में हमन के कतार से कतार 60 से 90 सेंटीमीटर, पौधा से पौधा 20 से 30 सेंटीमीटर। बुआई में गहराई का जरूर ध्यान देना चाहिए। बीज ला 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर हमन के बोना चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरा बोए से अंकुरण प्रभावित होएल वैज्ञानिक मन कथें। तो अरहर उत्पादन में हमन बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। छोटा छोटा चीज़ के हमन के ध्यान देना पड़ी और हमार खेती कर भी समय समय पर हमन के निगरानी करना पड़ी। आज सोमवार का दिन है और आज के दिन हमन एक विशेष क्रम सुनथन जिला कथें आज कर किसान। और एक क्रम में हमन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से हमन बात करें हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उद्यानिकी विभाग कर, और श्री अन्न कर खेती के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे एकर उत्पादन ले करके किसान मन लाभान्वित हो सकते हैं। तो बातचीत सुनती

0: राहुल मनकर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उद्यानिकी विषय में। इनकर से हमन बात करब कि सही अन्न कर जो हमारे क्षेत्र में खेती कर संभावना है वो कितना है, एकर खेती से हमन के कौन कौन सा फायदा हो सकता है और खेती किसानी में कितना सकारात्मक बदलाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, श्री अन्न कर खेती के बारे में हमन साल भर से ज्यादा समय से बात करत हन। मैन पार्ट में हमन देखें मेझरी कर भी खेती होयल, टाऊ कर भी खेती होयल और एकर अलावा और भी मोटा अनाज है जो वहाँ पर लगाते हैं किसान भाई बहनी मन, तो एकर खेती हमन कैसे कर सकत ही, कितना संभावना राउर के दिखत है।
1: जय जोहार किसान भाई, आप मन ला मैं बताना चाहूँ कि हमन जो एक विषय है बहुत अच्छा विषय है, जिला कहते श्री अन्न या तो कोदो कुटकी सावा ज्वार बाजरा रागी ये जो है ये सब में आते हैं। तो किसान भाई मतलब में ज़्यादा समय नहीं है तो मैं यही बताना चाहूँ कि हम जो 1900 जैसे 50 से आगू बटे 1900 जैसे हमारे सन है 50 से आगू बटे यही सब ला तो खात रहें,
0: यही ला
1: खात रहें और हम जो है 90 से 110 साल हम जियत रहें। आज जो है ना हम चावल और गेहूँ ये सब ला खा खा के काबर कि किसान मन 3100 रुपया कुंटल धान लेते हैं तो धान ला कमाते हैं और उसमें यूरिया खाद DAP पूरा रासायनिक खाद कीड़ा मकोड़ा डाल के जो है ना बर्बाद कर देने, तो एकर से ही जो है ना हमन ला जो है ना श्री अन्न कर खेती करना बहुत जरूरी है। काबर श्री अन्न के खेती करने से एक तो आजकल के जो परिवेश है बदलत है, तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ये मीथेन कार्बन सब बढ़त है। ये क्या है कि ये जो हमारे जितन श्री अन्न है ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी ये में जो है ना ग्लूटिन फ्री होते और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना बहुत कम होते, तो एक सेती बहुत सारे जैसे मोटापा मधुमेह होगी बहुत सारे बीमारी होगी ना अगर सती नहीं है, तो हमला जो है किसान भाई मनला जो है ना लगाना चाहिए। तो ये है कि काबर लगाना चाहिए क्योंकि ये जो है ना वर्षा आधारित फसल है, इसमें जो है ना पानी भी कम लगते और ये जो है ना ड्राट सुखाला भी सहन करते और उत्पादन घलो अच्छे देते। और हमार जो गरीबी जैसे गरीब किसान है, छोटे किसान है, लघु किसान है, बड़ा किसान है, मंझला किसान है, ये किसान मनला जो है ना एक पोषक तत्व ही मिलते जैसे प्रोटीन सॉरी हाँ आयरन विटामिन घलो मिलते हमें, कुछ कुछ पोषक तत्व भी मिलते हमें कि ग्लूटिन फ्री भी रहते और इनसे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये भी कम रहते, तो हम जो परिवार ला जो है ना अलग से जो है ना कुछ खाए बनी लागे, तो एक सती जो है ना हमला जो है ना इला करना चाहिए। काबर की 2023 में इला जो एक मतलब वर्ष मनाएन हमें श्री अन्न एकर वर्ष मनाएन हमन जिसे मिलेट्स ईयर बोलते हैं 2023 में मनाएन, तो है आज जो है ना बहुत अच्छा उत्पादन हुई से है मान के और मांग भी बढ़ी से है। हमारे जो भारत देश सबसे बड़ा निर्यातक मतलब श्री अन्न ज्वार बाजरा रागी एकर जो है निर्यात करते और जो खेती भी करते।
0: हमन जब डॉक्टर साहब एकर बारे में जानत नहीं रहे इतना वैज्ञानिक आधार पर जैसे राउर बताएं कि हमें प्रोटीन विटामिन कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट इतना इतना है एला खाना चाहिए एकर से फायदा होल, तब हमन एकर उपयोग कितना करत रहें। अब आज देखा हमन ला बात करना पड़ा थे लेकिन अब साल भर से ज्यादा समय बीतते सब जन

0: प्रयास से, राउर मनकर भी प्रयास से, अब आदमी के दिमाग में बैठी से कि ये कोई चीज है जेला खाना चाहिए, खेती बाड़ी में भी एक से फायदा हो और स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा है। तो जैसे मैन पार्ट जो क्षेत्र है हमन देखें कई बार हमन बचपन से वहाँ जाते हैं, एक ठो छोटा छोटा दाना कस वहाँ पर पैदावार करते
1: हैं,
0: तो वो मोटा अनाज श्रीयन है, मेजरी जला कहते हैं, एक बारे में थोड़ा सा बता देते हैं।
1: मेजरी ये जो है मेजरी इसका जो खेती है ना, तो अभी जो है थोड़ा सा मैन पार्ट में भी थोड़ा सा कमी हुई से, पहले बहुत अच्छा रही, अभी एक दो साल से कमी हुई से है। तो इसमें जो है ना मेजरी के जो है खेती ना, इसमें जो है ना पानी कम लगते, अगर किसान जो बूंद भी दिस ना तो पार्ट में बहुत अच्छा होते। तो जैसे अभी तीन जोताई, अभी एक दो जोताई कर ली किसान, ओकर बाद जो है ना अभी वही जून के आखिरी सप्ताह में,
0: अच्छा इला लगाए के समय भी अभी चला था,
1: अभी चला है जून में लगा रही है, जून बरसात तो आवे कर ही रहा, काबर की लेट लगा ही ना तो ओकर उत्पादन में भी कम होते। हाँ ये है,
0: कोई भी चीज करो तो समय पर लगाना चाहिए,
1: समय पर लगाना चाहिए। तो ये है, तो उसमें जो है ना अगर मेजरी ले छीट भी देते ना तो बहुत ज्यादा 8 से 10 कुंटलों में जो है ना उत्पादन ले लेते
0: हैं। इला डॉक्टर साहब मैं सुनें कि एकर आटा बनेल,
1: आटा बनेल
0: जो कुट्टू आटा करते हैं, एकरे बनेल
1: नहीं, कुट्टू वो अलग है,
0: वो अलग है, लेकिन एकर भी आटा बनेल, और एला भी उपवास में कहते हैं, और कुट्टू जो आटा बनेल वो भी मोटा अनाज से ही बनेल,
1: वाला टाऊ कहते हैं, बकवीट कहते हैं वाला,
0: अच्छा टाऊ जो मेन पार्ट में होएल ओकर से कुट्टू आटा,
1: हां नहीं कुटनी टाऊ ओकर जो है ना नाम है, हिंदी नाम है, कुट्टू जो है ना ऐसी साधारण भाषा है, और जो है बकवीट बोलते हैं इंग्लिश भाषा है, वैसला बोलते हैं, कुट्टू वाला कहते हैं, टाऊ भी वाला कहते हैं, बकवीट भी वाला कहते हैं, थोड़ा टाऊ कुट्टू एक ही है। तो इलाका होते हैं किसान भाई मन थोड़ा सा कहा है कि ये जो है ना पहले एरिया बहुत अच्छा रही, अभी थोड़ा सा कम हो गई से है, लेकिन जो है ना इला लगाना चाहिए, कहे कि वाला जो है ना उपवास, जैसे इला नहीं कहते हैं उपवास के समय भी खा सकते हैं अगर वाला, कहा कहते हैं अभी किसान मन जो है 30-35 रुपया वाला किलो ऐसी दाना ला बेच देते हैं, अगर वही आटा ला अगर पीस के अगर बेची ना तो 110 रुपया 150 रुपया 150 रुपया 150 रुपया किलो बिकते हो।
0: अच्छा हाँ, मतलब अगर प्रोसेसिंग भी अगर किसान के पास हो जाए सरकारी प्रयास से चाहे सामूहिक प्रयास से मैनपाट क्षेत्र में हो जाए तो किसान मतलब 3-4-5 गुना कमा सकते
1: हैं। 110 रुपया तो मिलना तय है, 120 रुपया दुकान में भी जाएंगे तो 210 रुपया मिलता है पैकेट में, आधा किलो का 50 रुपया,
0: और उकर पीछे जो किसान मेहनत करी से वाला 35 रुपया।
1: सही
0: बात,
1: तो ये हमारे किसान आज योजना है, जैसे अभी किसान मेन पार्ट में है तो ये जो है ना तिब्बती मनक लारल रही से, तो हमन जो है ना कृषि विज्ञान केंद्र मेन पार्ट की तरफ से जो ना हमन एक तो रिसर्च चला थे कि जो है अभी पुराना कुट्टू जो टाऊ है ओकर बीज ला हमन जो है ना रिप्लेस करना चाहते है हमन।
0: अच्छा
1: हाँ, तो जो है ना अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में चला था रिसर्च, तो हम लगा कर जो है ना अगली बार लगे रही हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में नया किस्म, तो इस साल भी हमारा किसान मला हम पहले वाला परीक्षण करबो, ओकर बाद जो है ना अगले साल किसान मला देबो
0: नया। तो ये जो नया किस्म कहाँ से लानी है?
1: ये उत्तरांचल तरफ से कहीं से लाए हैं, हमारे संस्था के प्रमुख जो हेड हैं वो लाए हुए हैं, तो उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं उत्तरांचल तरफ से हैं, तो एक
0: तो उच्च गुणवत्ता
1: वाला, उच्च गुणवत्ता वाला है,
0: माने जो अभी जो लगत है ओकर से ज्यादा पैदावार
1: भी, ओकर ज्यादा पैदावार भी हुई और जो है ना ओकर जो लागत भी कम लगी, कीड़ा मकोड़ा तो लगे वैसे नहीं लगे, लेकिन ओकर उत्पादन और दाना भी बड़ा बड़ा हुई ऐसे है।
0: ये तो बहुत अच्छा बात है। एकर अलावा जो डॉक्टर साहब
1: रागी कर खेती
0: वो भी मेन पार्ट में हो और बाकी जगह भी अभी देखत है, तो एकर पैदावार भी किसान अगर बढ़ाए तो मनला फायदा हो सकता
1: है। सकते हैं बिल्कुल, रागी में क्या है कि एला जो है ना जैसे रागी में जो है ना आजकल तो क्या करना चाहिए जैसे बुआई कर प्रबंध है, इसमें हल्का सा क्या है कि रागी में जो है ना सीधे भी बोई सकते हैं या तो जैसे वाला जो है ना रोपा भी लगा सकते हैं अपन किसान भाई, ये खेत में भी लगाना चाहे तो भी लग सकते
0: हैं। मैं सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि कई ठो खेत जैसे डाढ़ जमीन पड़े रहे जहाँ पर खेती किसानी भी नहीं हुए, ऐसे किसान मन छोड़ देते, वो जमीन कर भी उपयोग करके अगर हमन श्री अन्न कर खेती करी तो एक पैदावार भी बढ़ी और किसान ला फायदा भी हो जाए।
1: का है ना ये रागी जो है ना बहुत अच्छा फसल है, अगर एक चीज़ है कि जैसे रोपा लगा नहीं भाई धान ला लगाते हैं, रोपा लगा ले से बहुत ज़्यादा उत्पादन होते हैं। ये हमन जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मेन पार्ट जो है ना अभी सीतापुर में है, उमन में विगत 2-3 वर्षों से हमन कर थे रोपा लगवा थे, तो बहुत ज़्यादा अगर फायदा है।
0: अच्छा,
1: बहुत ज़्यादा है वो जो है ना अगर अच्छा से अगर उत्पादन करी ना अगर दूरी मेंटेन करी तो 20-25 क्विंटल जो है

0: पर एकर उत्पादन मिलते हुए। अच्छा है,
1: तो हमन जो रेट के चक्कर में पड़े रहन की 25 रुपया मिल जाए, 30 रुपया मिल जाए, ये जितना सीरिया नहीं है तो 30-35 ज्यादा रेट
0: मिली। ओकर का है, हमन जैसे किसान भाई मन का है अन्न केवल चावल ला देखथन, ओला हमन कुछ भी लड्डू बना सकत हन, ओकर आटा बना सकत हन, ओला जो है ना कुछ भी जैसे केक बना सकत हन, या खुरमी बना सकत हन, ठेठरी बना सकत हन, ओकर बहुत सारे ओकर बना सकत हन, ये है ओला बेच भी सकत हन।
1: सब कति से फायदा है,
0: सब कति से फायदा है,
1: सूर्य अन्न की तरफ झुकाव होना चाहिए और राउर मन से संपर्क करना चाहिए। मोला तो ये कहना है कि अगर समझ में नहीं आते है और लगत है कि कैसे खेती करो, हो ही कि नहीं हो ही, कभी कभी डर लगे, भाई किसान आदमी का है, मेहनत वाला आदमी है, मिट्टी से वो उगाना जाने, बंजर जमीन ला उपजाऊ बनाना जाने, तो खाना पीना सब निर्भर किसान की मेहनत पर रहे, तो डरेल थोड़ा कि नया खेती कर दे है तो हो इसकी नहीं हो इस फायदा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि राउर मन से संपर्क करी, वैज्ञानिक आधार पर एक खेती कर पूरा संभावना है और इमें सब कति से मदद भी मिलत है, तो कोई बुराई कर चीज नहीं है और स्वास्थ्यवर्धक
0: भी है। और इमें क्या है कि इमें डर एक चीज ही नहीं है, अगर शुरू से अगर इसे बीमारी लगी तो हम कि जैसे पौधा फसल लगाए के बाद संपर्क करें कि मतलब फोन लगाएं, साहब मतलब लगाए हन तो कुछ बीमारी आई, काका बीमारी आते वाला पूछ ले, ऐसे ऐसे लक्षण दिखते पहले दवाई डालना चाहिए। जैसे अगर आप जैसे इसमें कहे झुलसा लगते थोड़ा सा ब्लास्ट होगी झुलसा होगी तो ओकर का है एक दो दवाई है, बोला किसान भाई मन लिख के रखें, अगर ओकर दिखे लक्षण एक ठो पत्ती में दिखे तो समझ जाए कि वो जगह थे, एक मीटर में अगर आते 10 पौधा में लगी से एकर मतलब हमारा छिड़काव करना है और से कम है तो नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ना अगर पहले जो है ना किसान भाई मतलब बीच बीच में वाला खेत में घूमना चाहिए, बुलना चाहिए, तो तेकर से पता चले कि यहाँ बीमारी आते कि नहीं आते, बीमारी एक से पहले दवाई भी डाल सकते हैं, तो जो है ना जितना हानि होते नहीं हुए।
1: डॉक्टर साहब आज राउर से भेंट हुई और बहुत बढ़िया जानकारी हमन के मिली, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद करती, फिर कभी मौका मिली तो जरूर राउर से बात करो, बहुत बहुत धन्यवाद।

ये रहीस आज कर किसान क्रम डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी रहिन और श्री अन्न की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते रहिन। और हमारे कार्यक्रम के समय धीरे धीरे होते जाते, एक बढ़िया एक गीत और सुन लेती। विजय सिदार कर गाल गीत है, बढ़िया गीत है, ला सुन थी।

ये गीत रहीस विजय सिद्धार उनके संगता मन कर गाल गीत रहीस। और अब मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर बेरा हो गई से। मंडी कार्यालय से जानकारी के अनुसार गेहूं कर मूल्य 2485 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 6000 रुपये, मक्का कर 1400 रुपये, अलसी का 5600 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम कार्यालय से जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान रही 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 23 डिग्री सेल्सियस, कल 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 24 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं हल्का हल्का बारिश की संभावना भी बताते हैं। आज कर सवाल का बेरा हो गई से हमन बात करें हन अरहर कर उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में। वही से जुड़ल हमर आज कर सवाल रही, अरहर कर कुछ उन्नत किस्म के नामला, दो तीन ठो नामला लिख के हमन के भेज दी। सही जवाब देहे वाला सुनोइया भैया बहनी मन कर हमन नाम लेहब। आज कर सवाल चौपाल अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन 497001। ये पता पर पोस्ट कार्ड में सही जवाब लिख करके हमन के भेजना पड़े। और एक साथ मैं कहते रहन कि किसान वाणी कार्यक्रम बस आज इतरिच। और हमन जो बात करथन कि खेती किसानी में हमन कई बार देखथन कि कुछ योजना और काम करेल, गोबर धन योजना भी रहेल। और हमन एकर बारे में कथन कि अपशिष्ट से चाहे कचरा से, या जिला अंग्रेजी में कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ, कचरा से संपदा निर्माण, एकर बारे में हमन कथन। तो एकर बारे में भी हमन की जानकारी होना चाहिए। देश भर में 1700 बायोगैस संयंत्र पंजीकृत हैं और इनमें से 1228 से ज़्यादा संयंत्र अभी काम करते हैं। 563 जिला में बायोगैस परियोजना पहुँच चुकी से। और एकर मुख्य उद्देश्य है कि गोबर, कृषि अवशेष, रसोई कर जैविक कचरा और अन्य जो अवशेष से बायोगैस, बायो सीएनजी और जैविक खाद बनाल जाते और एकर से किसान मन ग्रामीण बढ़िया कमाई कर सकते हैं। तो ये बढ़िया योजना चलता है और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा योजना चलाल जाते हैं। और एक साथ देखा आप चौपाल से विदा लेकर बेरा हो गई से, आन दिन बिटाप तो फिर बातचीत करब। आज चलत ही, राम राम।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए अभी चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके बेहद पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और इसे सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। सिद्धमा बाजार बलरामपुर से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य। आमागासी लखनपुर से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और उनके परिवार के सभी लोग। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। बगबुड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेतान। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना और उनके साथ ही। चनोरा फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा और उनके साथी। नोखा राजस्थान से हमारे श्रोता हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार

उनका बाबू गौरी हसन और उनके सभी साथी, पड़ौली धौरपुर से प्रथम प्रफुल्ल खंडा, कैरव खंडा, गर्वी खंडा, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार, सारसताल सोनगरा, सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा और उनके सभी दोस्त, राजापुर सूरजपुर से खेल साय मरकाम, नैन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, हीरा लाल प्रजापति, कविता और आरती मरकाम, डोंडीलोहारा बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश और माहिर नेताम, अनुजनगर सूरजपुर से चंद्रबहान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और मंजू राजवाड़े, और उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह, पीपरलोट सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रीतेश संगई और उनके परिवार के सभी सदस्य, और सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पा ताई नारे और उनके साथी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं सुरेश वाटकर और लता मंगेशकर का गाया फिल्म प्रेम रोग का गीत।

लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। चरौदा नवापारा बलौदाबाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य। खोंदला उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा और उनके साथ ही। सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी मिस्कीन, आरव और चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, आरोही और प्रियांशी। बेरड़ी छिंदवाड़ा से नाना जी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे, हर्षिता लामसे और उनके साथी। मोतिहारी बिहार से नंदन कुमार सिंह, अंकित सिंह,

0: संदीप कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराणे, वनीता गंगराणे और मोहम्मद हसनैन पवार, पंचकुला से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान और उनके साथी, कसकेला सलका भैया थान से शेष कुमार सिंह, सेजल सिंह, ज्योति सिंह, अर्चना साक्षी और उनके साथी, कौशलपुर रामानुज नगर से सुखराम सिंह मरावी और उनके साथी, नांदुरा बुलढाणा से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल, यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और उनके साथी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और पद्मपुर श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, उनके साथ ही आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गीत।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओ, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश अपने रेडियो दोस्त मृदुल के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीप धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार, अर्चना कुंभार, अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अंबिका सोनवणे और साइशा सोनवणे। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। रुद्री धमतरी से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम, सावित्री और शिखा शेफाली। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा। डोंगरगांव से राजपाल गजबीहे, राधिका गजबीहे, अनिष्का और तन्मय गजबीहे। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। तारकेश्वरपुर, सूरजपुर से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति, दक्ष प्रजापति, कुंती मंगलराम, रिद्धि सिद्धि प्रजापति और उनके साथी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। लसोड़िया पाता नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। भाऊपुर जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी और सुराज अख्तर। नवागांव मुढ़ी पार राजनांदगांव से सोहनलाल साहू, रुकमणी साहू। बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल। धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, छुटकी पूजा, शरद कुमार डोडवानी और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सब। मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, इरशाद अजरा, तबस्सुम रायपुर अनई से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन, जस्मीन सकीला, सना शमा, हिना रजिया सुल्तान, कुशल साहू और तेजेश्वर साहू ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। गुरकीरत गुरशब्द सिंह, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका और उनके साथी, मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला नवारकर, विशाल नवारकर, सोपान तायडे और नारायण इंगले, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और इनके साथी, जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निज़ामुद्दीन, आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, रोहतक कॉलोनी से सीताराम कांगड़ा और बबीता बोध, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्वांशी खेड़ा और उनके साथी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव और खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास रोशनी और शगुन बारसा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया फिल्म गोरा और काला का ये गीत।

पाटन गुजरात से धीरज वी रापारी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करणा मीना विश्व अश्वनी और विपुल कामड़े, गंज डूंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी और अलिया अंसारी, दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, गुगावा खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, प्रणीता गवहाणकर और टुकटुक गवहाणकर, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन बेंडे, धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी और अंकिता जोशी, रजौनी बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार के सभी सदस्य, मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, और मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। और ये श्रोता हमारे हैं बड़वाह खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा लता मंगेशकर और मुकेश का गाया फिल्म कभी कभी का ये गीत।

और श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, रावर करनाल से विनोद लखनपाल की पसंद है। और इनके साथ साथ हमारे कुछ और साथी हैं, हाड़ी सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, रेंगाखार कवर्धा से राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह नेताम, दक्ष प्रिया, महामाया सरगम, जय सूर्या नेताम, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, नतन माला सुरेलकर, आरती गौरी, ओम प्रकाश सुरेलकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी और उनके साथ ही, मेरठ से कविता गौर और दिग्दर्शन, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, चंडीगढ़ से वड़िंगखेड़ा पंजाब से बिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, पंजाब से मोहम्मद हफ्जुद्दीन, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन, दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा, साहिबा गुप्ता और उनके साथी, सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल डिकोस्टा और विलिस डिकोस्टा, और सहारनपुर से राधा नामदेव, अर्पणा, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और महिमा नूर, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, मेफरा नवाज और चाहत, घरौड़ा करनाल से विजेंद्र कुमार, जयजान कांता, रानी कुंजन, साहिल वाणी और उनके साथी, यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और उनके साथी, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, और लाहौड़ा बागपत से जगमोहन सिंह, प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नितिन। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत,

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के गाए फिल्म क्रांति के इस गीत के साथ ही आज का इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम आज यहीं तक। मीडिया वेब और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि

0: दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से

0: पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and its Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ है मनहर और अनुराधा पौडवाल की, और फिल्म का नाम है राम लखन।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं और ये वक्त है आपके बेहद पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज का। आज इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त मृदुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। पद्मपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता और दीपिका साहू का ईमेल भी हमें मिला है। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गंडूलाल रजक और मुरली क्षत्री। लगान पंडरिया से हमें ईमेल भेजा है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक सुंदरलाल और पूजा खटक। बेरली मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर, शाइना हसन और इब्राहिम। दिल्ली से मानसी और गौरव अरोरा और डोंगरगांव से हमें ईमेल भेजा है राजपाल गजबीहे, राधिका गजबीहे, अनिष्का और तन्मय गजबीहे ने और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म धर्मात्मा का गीत। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं की। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना को। कभिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल। धमधा सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। गांव फ्रासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। तिलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर और सुजाता पोहरकर। आजादनगर लग्जर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां। बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल। लसुड़िया पाता नरसिंहगढ़ से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्रदांगी। नागपुर से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और डीकेश साहू। नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और सिया जाधव। जालना शहर से शोभनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। शाहजीनगर नादेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है उस्तादी उस्ताद से। माफ़ कीजिएगा श्रोताओं, फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राविया रामटेके, ओटी श्रीवास, शेख आजाद और पोपोरानी, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल डिकोस्टा और विलिस डिकोस्टा, दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष, सोनी मोहनी, ऋतिक बलबीर सिंह, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, अहमदनगर से जुनेद

मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। दुल्हापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लचनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, ग्राम बमना। हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। भाटापारा से दानसी रावत, दानू, पद्मनी रावत, नीरज रावत और शुभम सौरव रावत। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल। दिल्ली से याकूब आसमा, फकीर यूसुफ आसमा, फकीर सलीम आसमा, अल्ताफ आसमा और अमीर आसमा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कुर्बानी। गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। जोड़ा पीपल अंबिकापुर से स्वरूप आनंद सरजाल, मैनपाट सरगुजा से सोनम थापा, फातमा थापा, आदिबा थापा, आसमा सरफुद्दीन बेलदार, वसीम अकरम बेलदार, डब्लू वली लाहली, मेराज अहमद बेलदार और कालिया बेलदार, डोंडे लोहारा बालो से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अलकबीर, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, अड़ाड़ नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति और कालापरा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, नवागढ़ कटई से हमें ईमेल भेजा है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत और पुष्पांजलि वर्मा ने, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर का ईमेल भी हमें मिला है, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े, सारसताल सोनगरा सूरजपुर से है ईमेल भेजने वाले श्रोता है प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्रीभगत, हेमंत कुमार और रामखेलावन सिंह पैकरा, गणई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र और रौनक सेन, झुमरी तलैया गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका गुड्डू, मुन्नी जयप्रकाश, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध और कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी और तनिषी गुप्ता, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, सविता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहब करवा, दांडी नादुरा महाराष्ट्र से हमें ईमेल भेजा है श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे ने, अंबई सिल्लोड से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली घोड़के, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यकेश घोड़के। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। यसुदास और आशा भोसले की आवाज में गीत लिखा है योगेश ने, संगीत सलील चौधरी का है और फिल्म का नाम है छोटी सी बात।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गंगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी और वामिका वाणी थांदी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और शरीफ नवाज। बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। शेगांव बुलढाणा से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, गजानन सलोनकर। रानीगांव धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू। और छुरी कुरवा से हमें ईमेल भेजने वाले श्रोता लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू, बबन मुन्नू, कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म शोर का गीत। गीत लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मुकेश और लता मंगेशकर के गाए फिल्म शोर के इस गीत के साथ ही आज का ईमेल की गूंज कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त मृदुल के साथ। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निषाद खां का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण।

सूर्यावनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद निषाद खां का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09

मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 बस होने ही वाले हैं और अब हम आपके लिए पेश करेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम, आप जो सुनना नहीं भूलते हर रोज हर रात। जी हाँ, मन भावन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम मन भावन का पहला गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम हम बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद।

अभी आपने सुना फिल्म आंधी का गीत, और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में, आवाज किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है कुदरत। और इन दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है। धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपानी, संगीता नेपानी, आकाश नेपानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। कन्यापुर से रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और उनके परिवार के सभी लोग। दतरेंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। बेलर गांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविन्द्र सेन। यहीं से खुशी और रौनक सेन। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे। खुदरी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। और संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इशिका तेजल यादव। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुदरत से।

0: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और उनके परिवार के सभी सदस्यों की पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार और उषा तिमोथी का गाया आनंद बख्शी का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में। आइए सुनते हैं।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई, छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा, ओ धोंडीबा, आई का, ओए जरनल सिंह, ओए जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार और उषा तिमोथी का गाया फिल्म कहानी किस्मत की का गीत। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हमारे श्रोताओं की पसंद पर। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले पगबुड़वा पथरिया से, नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नोताम, दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, बठेना पाटन से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा और आयुषी कृत वर्मा, और संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम आपकी कसम।

मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आपकी कसम का ये गीत। और मनभावन कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलजार का लिखा गीत, संगीत हेमंत कुमार का है, आवाज़ किशोर कुमार की और फिल्म का नाम खामोशी। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, चांदूर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी, ये श्रोता हमारे हैं। रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी,

पूजा, विक्की, रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र, आप सब इंदौर से, जरुण वरुण महाराष्ट्र से, बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या और प्रियंका, आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म खामोशी से।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म खामोशी के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास

0: Underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ कल सुबह 5:51 पर हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।